आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने, नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने, नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है रहा।
3: चंदू के चाचे को चांदी के हाथ में चांदी के रूम से चटनी चढ़ा
2: छताई।
3: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
3: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
2: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो
13: शुक्ला जी, वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
14: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
18: मैं तो बुरी।

सफर भी तय करना, क्योंकि किया जो सफर हमने चाहने से ना चाहने तक का, वो मिला या ना मिला ये तो बाद की बात है, परंतु एक मुलाकात खुद से हो गई, बस ये कमाल की बात है। आया कुछ समझ श्रोताओं? नहीं आया, कोई बात नहीं, कार्यक्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे आज आपके साथ, जिससे आप ये भी समझ जाएंगे और आपको अपने साथ कैसे वक्त बिताना है और अपने जीवन में प्रायोरिटीज को कैसे रखना है वो भी समझ जाएंगे। बस कुछ ही देर में आपको बता देंगे हम कि आज हम कौन से मुख्य विषय पर बात करने वाले हैं।

रमैया वस्तावैया। श्रोताओं, ये गीत सुना आपने श्री 420 फिल्म से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओं, हम पहुंच गए हैं 19 अगस्त 2026 में। आज दिन है बुधवार।

और यूं कहते हैं कि बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का होता है, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल करते हैं वो। खैर, हम तो हर दिन को किसी न किसी ईश के साथ जोड़ ही देते हैं, जैसे भी हमारी मन की भावना हो। और वैसे हम लोग पहुंच चुके हैं भादों के महीने में, लेकिन कुछ लोग अभी भी सावन का महीना ही इसे मान रहे हैं। और हाँ भाई, बाहर, क्योंकि देखो आज सुबह पाँच बजे से बारिश धड़ाधड़ लगी हुई है, और रात को जो दो बार भूकंप आया है ना, उसने तो हमारी जान ही निकाल दी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और आप के घर भी सही सलामत ही होंगे, क्योंकि जब ऐसे छोटे मोटे झटके आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दरारें वगैरह पड़ ही जाती हैं। तो हमें कुछ दिनों के बाद फिर देखने से, बड़े ध्यान से देखने से पता लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। और ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए हमें पहले से ही सतर्क होना चाहिए, मतलब जब हम घर बना रहे होते हैं उसी वक्त, क्योंकि घर, कहते हैं ना श्रोताओं कि घर जो है वो एक ही बार जिंदगी में बनता है। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है या कहीं पर आप वैसे ही किराए पर रह रहे हैं, तो भी वहां पर भी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत तो है ही, है ना। कई बार हम लोग सामानों को कुछ इस तरह से परछतियों पर ठूंस देते हैं, रख देते हैं कि अगर ऐसा कोई झटका थोड़ा ज़ोर से आ जाए, तो कहते हैं ना कि झटकों से या फिर ज़मीं दोस्त होने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा जाने नहीं जाती। जाने तब जाती हैं जब कोई सामान हमारे सिर पर गिरता है, यानी कि हमारे को हेड इंजरी हो जाती है ना, तब ज़्यादा मुश्किल होती है। और वो हेड इंजरी कभी भी कैसे भी हो सकती है। आपने छत पर गमले रखे हैं, नीचे चलते हुए किसी व्यक्ति के सर पर गिर सकता है, या आप ही को कभी नुकसान हो सकता है उससे। तो हर एक चीज़ सोच करके जो भी काम हम करते हैं वो करना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही हम छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख लें। तो वैसे तो मौसम का हालचाल आप लोग देख ही रहे हैं बाहर कैसा है, परंतु यहाँ से बताना भी हमारा फर्ज है, तो आपको बता दूं कि अभी इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में हालांकि हमें ठंड महसूस हो रही है, मैं तो स्वेटर पहनकर भी आई हूँ आज क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी यहाँ एसी भी लगा होता है ना, तो हमें थोड़ी सी ठंड महसूस होती ही है। वैसे ही 21 डिग्री सेल्सियस इस समय बाहर का तापमान है, और ये अभी आपको अभी महसूस नहीं होगा, ये आपको महसूस तब होगा जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकेगी और धूप थोड़ा सा लिशकारा अपना दिखाएगी ना, तब आप कहेंगे कि ओहो हो बहुत गर्मी है। और न्यूनतम तापमान आज 19 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। हवा में जो नमी है वो बहुत अधिक है, लगभग 85 से लेकर 99% तक। हवा की गति के बारे में भी जान लेते हैं। करीब 7.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है हवा, और आज तो भाई मुझे ऐसा लगता है जब मैं सुबह जगी, सुबह 5 बजे ही जग गई थी, और तभी से ये बारिश धड़ाधड़ रिमझिम रिमझिम तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि भयंकर वाले रूप में थी, और रिमझिम रिमझिम तो अभी लगी है बाहर, लेकिन जब तक मैं स्टूडियो नहीं पहुंची मेरी जान अटकी ही रही, क्योंकि मुझे भी ज़रूरी था कि 9 बजे तक तो कम से कम मैं यहाँ पर पहुंच ही जाऊँ, उससे ज़्यादा लेट तो मैं भी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे ही आप भी अपने अपने कामों पर निकले होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आप भी अपने अपने कामों पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो आपका ध्यान रखें प्रभु ईश्वर, और साथ ही साथ आप खुद भी अपना ध्यान रखें, बस यही कामना है हमारी। और उन सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का अपना ये दिन मना रहे हैं। चलिए मुबारक हम दोबारा से दे देंगे आपको कार्यक्रम में। अभी चलते हैं एक गीत की ओर, वैसे समय थोड़ा सा कम ही रह गया है। गीत आपको सुनवा रहे हैं।
श्रोताओं, लेकिन अगर ये गीत बीच में हमें काटना पड़ा तो फिर से सुनवाएंगे।

0: श्रोताओं, अब हो गया है समाचारों का वक्त। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं हम आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो।
1: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं से राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के समक्ष प्रदेश के हक की मजबूती से पैरवी करने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को वित्तीय संकट से उभरने के लिए अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में माता पिता और समाज की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई को लेकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का लगाया आरोप। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, आज 7 जिलों में येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं से राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश के हक की मजबूती से पैरवी करने का आह्वान किया है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि आपदा हो या आरडीजी का मामला, भाजपा नेताओं ने कभी भी केंद्र से इस संबंध में प्रदेश का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी बंद होने से राज्य को लगभग 8 से 10 हजार करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य सरकार इसे लेकर तथ्यों के साथ श्वेत पत्र लाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लोगों से जनगणना 2027 के दूसरे चरण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और वास्तविक आवश्यकताओं के सही आंकलन के लिए नागरिक 31 अगस्त तक उपलब्ध स्वगणना सुविधा का लाभ उठाकर अपनी सही जानकारी दर्ज करें। मुख्यमंत्री ने 1 से 30 सितंबर तक घर घर आने वाले प्रगणकों को सही विवरण उपलब्ध करवाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने का आह्वान भी किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार को वित्तीय संकट से उभरने के लिए अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। मंडी जिले के थुनाग में धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक ढांचे में सुधार की बजाय अपने चहेतों की खातिरदारी पर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर असंवैधानिक रूप से उपाध्यक्ष बनाकर फिजूल खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में माता पिता और समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। शिमला में आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत बीते वर्ष 18.5 लाख लोगों को जागरूक किया गया। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में अब तक नशा तस्करों की 63 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और 8,250 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। माकपा की राज्य कमेटी ने प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों का विरोध किया है। शिमला में हुई पार्टी की बैठक में राज्य सरकार से इन भर्तियों को तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया। पार्टी नेता तपन सेन ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण का आरोप भी लगाया। कुल्लू जिला में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की 35 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: इस अभियान के तहत आनी खंड की बिनन और निर्मंड खंड की देहरा पंचायत ने सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए गोल्ड श्रेणी स्मृति चिन्ह हासिल किया। वहीं आनी ब्लॉक की बहना, जाबन, पोखरी, कराना तथा निर्मंड ब्लॉक की बखान पंचायत को सिल्वर स्मृति चिन्ह से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त बंजार, जरी, नगर, आनी और निर्मंड ब्लॉक की अन्य 28 ग्राम पंचायतों को टीबी नियंत्रण दिशा में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए ब्रॉन्ज स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर ADM सुरजीत सिंह राठौर ने सम्मानित पंचायत के प्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि समाज को टीबी रोग से मुक्त बनाने में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अन्य पंचायतों से भी प्रेरणा लेकर इस जन स्वास्थ्य अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया, ताकि कुल्लू जिले को पूर्णतः टीबी मुक्त बनाया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई व आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। एक बयान में पार्टी प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का वादा भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली है और सरकार नई भर्तियां नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से जनता परेशान है, कर्मचारी असंतुष्ट हैं और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, जो किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी है। इससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के चलते राज्य में अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं और लोग अपने घरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
3: हिमाचल प्रदेश में हो रही मानसून की भारी वर्षा लगातार जानलेवा साबित हो रही है। सिरमौर जिला के शिलाई तहसील के कफोटा के निकट माइनिंग एरिया में हुए भूस्खलन में 3 मजदूरों की मौत हो गई। सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों में 2 नेपाली मूल के और 1 स्थानीय व्यक्ति है। सिरमौर जिला में ही नाहन विधानसभा क्षेत्र का राजकीय पाठशाला मातर भारी बारिश के चलते व साथ बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू में तब्दील हो गया। यहां फंसे सभी 52 विद्यार्थियों और स्टाफ के 12 सदस्यों को स्थानीय लोगों, होमगार्ड और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से देर शाम तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारी बारिश, भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं के चलते प्रदेश में 88 सड़कें, 19 पेयजल योजनाएं और बिजली के 12 ट्रांसफार्मर बंद हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: चंबा व कांगड़ा जिलों में कल शाम भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। पहला झटका शाम 6:54 पर महसूस किया गया, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.6 रही। इसका केंद्र चंबा रहा, जबकि दूसरा झटका 7:40 पर आया, जिसकी तीव्रता 4 आंकी गई। हालांकि इसका केंद्र कांगड़ा जिला रहा, लेकिन चंबा में भी इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप के इन झटकों से किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। लाहौल स्पीति के उदयपुर का राज्य स्तरीय पोरी मेला 21 से 23 अगस्त तक पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
4: त्रिलोकीनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय की आस्था का केंद्र एक ही है। यही धार्मिक समरसता पोरी मेले को विशिष्ट पहचान देती है। 3 दिवसीय मेले में भव्य शोभा यात्रा, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्याएं प्रमुख आकर्षण रहेगी। शोभा यात्रा में लाहौल की पारंपरिक वेशभूषा और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जबकि खेल प्रतियोगिताओं में स्थानीय युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने भारी बारिश से हुए नुकसान से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, सिरमौर में चूना पत्थर खान में भूस्खलन, चालक समेत 3 दबे। लाहौल में 3 जगह फटे बादल। पंजाब केसरी के शब्द हैं, सिरमौर के बागनाधार में मलबे की चपेट में आई मशीनरी, 3 दबे। मानसून सीजन में अब तक 97 मौतें। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, आपदा राहत के 1500 करोड़ पर पीएम को पत्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, राज्य के हक के लिए दोबारा चिट्ठी भेजेंगे। दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, क्लास 1 अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल तय करें सरकार। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल कैबिनेट के विस्तार पर आज दिल्ली में फिर होगा मंथन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं से राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के समक्ष प्रदेश के हक की मजबूती से पैरवी करने का किया आह्वान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार को वित्तीय संकट से उभरने के लिए अपनी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की दी सलाह। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में माता पिता और समाज की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई को लेकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का लगाया आरोप। और प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित, आज 7 जिलों में येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार सुन सकते हैं सुबह 11 बजे।

तो श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो चैनल 91.2 एफएम पर। वैसे कायदे से तो हमें ये कहना चाहिए कि गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में, और मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि ये जो प्रादेशिक समाचार हैं ये भी हमारे ही कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, जिसमें कि आप देश प्रदेश की जानकारियाँ जो हैं वो पाते हैं। यहाँ से जो हम जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं वो तो हम अपने कांगड़ा ज़िला की कोशिश करते हैं कि इसकी करें, लेकिन पूरे प्रदेश की जानकारियाँ आपको प्रादेशिक समाचारों में मिल जाती हैं। और अब 9:32 हो चुके हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातों के बाद अब एक गीत भी ज़रूरी है, और गीत वही जो हमने छोड़ा था। आइए सुनते हैं वही प्यारा सा गीत।

तो कैसा लगा आपको ये गीत मेला फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हरिम जिम बरसते हुए सावन में इस तरह के गीत सुनने में अच्छे तो लगते ही हैं, है ना। तो श्रोताओं, आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और आजकल ना हर व्यक्ति ही फोटोग्राफर बना हुआ है। क्यों, गलत कह रही हूँ मैं? आप सभी के हाथों में मोबाइल है, एक ऐसा चलता फिरता यंत्र जिसका कि हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और पहले होता था ना, ये प्रोफेशन जो है ये कुछ लोगों के नाम ही था, और ये था कि वो अमुक व्यक्ति है वो बड़ी अच्छी फ़ोटो खींचता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। तो अब वो सारे दिन भी बदल चुके हैं और हम में से हर कोई अगर चाहे तो फोटोग्राफर बन सकता है। लेकिन हर एक चीज़ का स्किल होता है, हर एक चीज़ के, हर एक प्रोफेशन के डीप में जाने के लिए उसके स्किल्स को अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। ऊपर ऊपर से तो हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश तो मेरी भी यही रहती है कि मैं भी हर एक चीज़ में हाथ आजमा लूँ। और जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो कई बार मुझे ये कह भी देते हैं कि भाई तुमने कोई फील्ड छोड़ी भी है, तो मैं कहूँगी कि नहीं, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ ये करने में खुशी मिलती है। और सीखना कोई उम्र का मोहताज तो होता नहीं है, आप जिस भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। परंतु एक मास्टर होने के लिए किसी भी चीज़ में ना उसके डीप में, उसके गहराई में उतरना, यानी कि कहते हैं ना समुद्र से ही हमें सीपियाँ मिलती हैं, जितना नीचे जाएंगे, जितने तले में जाएंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी। तो बस कहने का भाव तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। और आज का जो विचार है वो भी मैंने थोड़ा बहुत तो आपको कार्यक्रम के शुरुआत में ही साझा कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो वही कि कहीं कब किसी भी चीज़ के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे उसका परिणाम उतना ही सुंदर होगा। तो सही समय या अवसर की प्रतीक्षा में बिल्कुल मत बैठिए, आज का अवसर ही आपके लिए बेहतरीन अवसर है। और जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी बड़ी मंजिल को पा नहीं सकते हैं। तो आज का दिन तो ये फोटोग्राफर्स के लिए है और हम उन सभी को मुबारकबाद भी देते हैं। हम इस वक्त फेसबुक पेज पर लाइव भी हैं, ये भी आपको बताते चलें। तो जल्दी से आइए, जुड़ जाइए हमारे फेसबुक पेज से भी। और यहाँ पर कोई लाइक कर रहा है लेकिन हमें नहीं पता है, उसका नाम फ्लैश नहीं हो रहा है, अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर आपका नाम यहाँ से अनाउंस करेंगे। और ये लाइक कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट अभी तक फ्लैश नहीं हुआ है आपका, लाइक्स आ रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। और आपको ये भी बता देती हूँ मैं कि आज आप अपनी, वैसे मैं ये थोड़ी देर बाद बताना चाह रही थी लेकिन चलिए अभी ही बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं गांवों के बारे में। और आपको आज लिए चलेंगे हम शहरों से गांवों की ओर, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना वो बिल्कुल गांवों में ही बसी हुई है। हम बेशक शहरी हो गए हैं, शहरीकरण में ढल गए हैं, लेकिन गांवों की याद तो आती है ना। जब भी कभी किसी से पूछा जाता है ना आपका गांव कौन सा है, तो बहुत ही उत्साह से बताया जाता है, बताता है वो सामने वाला कि वो हमारा गांव है। और बताता ही नहीं है बल्कि हम लोगों को अपने गांव के अंदर तक लेके चला जाता है बातों ही बातों में। मतलब उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं पूरे सही जगह पर, सटीक स्थान तक इनको पहुँचा दूँ कि मेरा गाँव अमुक स्थान पर है और उसकी ये विशेषताएँ हैं। कितना अच्छा लगता है ना मन को तब कि हम अपने गांव में, अपनी जड़ों में पहुंच गए हैं। बस आज के कार्यक्रम में हम यही कोशिश करेंगे कि आप भी, अगर आपको नहीं याद आ रहा, नहीं अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हैं अपने गांव से, तो ज़रूर आज के कार्यक्रम के द्वारा कनेक्ट हो जाइए। और क्या क्या होने वाला है कार्यक्रम में आगे हम ज़रूर जानेंगे, फिलहाल एक गीत हो जाए। और हाँ, आज के कार्यक्रम में
हमने जो गीत रखे हैं ना वो भी कुछ ऐसे ही ग्रामीण परिवेश से मिलते जुलते ही रखे हैं। और सच में भाई ये जो गीत मैं लाती हूँ ना कार्यक्रम में आप सबके लिए चुन चुन करके लेकर आती हूँ, बड़ी मेहनत लगती है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि गीतों की जो लाइब्रेरी है वो ख़त्म हो गई है बाहर और आप लोगों को वो गीत नहीं मिल सकते जो मैं लेकर के आती हूँ, लेकिन कुछ एक गीत इनमें से ऐसे भी होते हैं जो शायद मैंने भी पहली बार सुने हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि आप भी सुनें। लेकिन हाँ, अगर आज के विषय से संबंधित हों तब तो और भी चार चांद लग जाते हैं ना फिर कार्यक्रम में। तो ऐसे ही चुने हुए गीतों में से एक गीत ये भी है।

0: तो दोस्तों पलकों की छाव में क्षमा करें, चित चोर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। यशुदास की आवाज में तो कैसा लगा आपको ये गीत और कैसा लग रहा है आज गांव का सफर? तो दोस्तों गांव से शहरों की तरफ तो सब जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है थोड़ा शहरों से गांव की ओर मुड़ने का और अपनी मिट्टी की तरफ लौटने की। ये तड़प आज की नहीं, जब हमारा देश गुलाम था तब भी हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे पुरखों ने यही पुकार लगाई थी। ये शहरों की इस बनावटी दुनिया को छोड़ो और अपने असली देश, अपने गांव की मिट्टी की तरफ कदम बढ़ाओ।
1: ओ देश नु चलो।
0: और यहाँ एक कमेंट हमें आया है, ख्यालों की रबानी में जादू सा असर है, आपकी हर बात

मानो उम्मीद का सफ़र है। संगीत के दरमियान जब आप कुछ कहती हैं, तन्हाई का हर लम्हा खूबसूरत सा लगता है। वाह, धन्यवाद जी, धन्यवाद। वैसे आज कोशिश करेंगे कि संगीत के दरमियान हम कुछ ना कहें, आप आराम से ये गीत इंजॉय करें। परंतु संगीत के दरमियान हम तभी कुछ कहते हैं जब हमें लगता है कि भैया कार्यक्रम में अब समय कम रह रहा है और हमारा जो मटेरियल है जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो छूटता सा चला जा रहा है, तो कोशिश होती है कि गीत संगीत भी चलता रहे और हमारी बातें भी चलती रहें।

तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे पुरखों ने यही पुकार लगाई कि शहरों की इस दुनिया को छोड़कर अपने देश यानी असली अपने गाँव की मिट्टी की तरफ कदम बढ़ाओ। और उस दौर में भी युवाओं से कहा गया कि वह अपनी जवानी को इस परदेश और इस चकाचौंध में ना गवाएं बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटें। तो यह है शहीद फिल्म का कालजयी गीत जो आज भी हमारी रूह को अपनी मिट्टी से जोड़ देता है। हंसराज हंस की आवाज़।

दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई के समय गांधी जी ने नारा दिया था, भारत गांवों में बसता है। उन्होंने खादी और कुटीर उद्योगों के जरिए लोगों को शहरों की चमक दमक, जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, छोड़ करके वापस गांवों को मजबूत करने की अपील की थी। ये गीत उसी दौर की याद दिलाता है जब देश को आज़ाद कराने के लिए शहरों के सुख आराम को छोड़ करके लोगों को ग्रामीण भारत की धूल मिट्टी से जुड़ना पड़ा था। जी हाँ, हमारा आज का ये शो भी यही कह रहा है कि भले ही आज हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन आत्मिक आज़ादी और सुकून के लिए हमें फिर से उसी गाँव के आंगन की ओर रुख करना ही होगा। तब कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन एक पुकार पर पूरा देश इकट्ठा हो जाता था। दिलों में कोई दूरियां नहीं थीं, लेकिन लोग एक दूसरे के सुख दुख के लिए मीलों पैदल चलकर घर द्वार तक जाते थे। और ये गीत उस दौर के सामूहिक जज्बे को जगाता है। जहां आज हम मोबाइल में सिमट कर अकेले हो गए हैं, वहीं ये गीत हमें उस दौर की याद दिलाता है जब देश के लिए सब एक साथ पगडंडियों पर निकल पड़ते थे।

0: 1700 में कई लोग अंग्रेज़ों की नौकरियां या उनके तौर तरीकों के पीछे भाग रहे थे। क्रांतिकारी उन्हें वापस अपने देश की मिट्टी की सेवा करने के लिए पुकार रहे थे।
1: अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें।
0: और आज के संदर्भ में वो परदेश हमारे कंक्रीट के शहर और हमारे मोबाइल की ये सिमटी हुई डिजिटल दुनिया बन चुकी है। हम आज शहरों की भागदौड़ और इस छोटे से यंत्र यानी स्मार्टफोन में अपनी ज़िंदगी और सुकून को रोल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। शहरों से गांव की ओर जाने का मतलब ये है कि अपनी जवानी को इस कंजस्टेड दुनिया से बाहर निकाल करके वापस खुली हवा और अपनी मिट्टी को सौंपिए।

तो दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10 बजने में केवल 2 मिनट बाकी हैं और आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

तो दोस्तों ये फिल्म है बंदिनी, जी हाँ, इसका काल जयी गीत है। 1963 में ये फिल्म आई थी। ओ पंछे प्यारे सांझ सकारे, बोले तू कौन सी बोली। महान संगीतकार एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया, शैलेंद्र ने लिखा और आशा भोसले ने दी है अपनी सुरीली आवाज़।

पर जब हम गांव की बात करते हैं तो वहां सुबह असली पक्षियों की चहचहाहट से होती है, मंदिर मस्जिद की शांत आवाज़ों से होती है और शाम को खेतों से लौटते मवेशियों के गलों की घंटियों से। गांव हमें प्रकृति की सहज बोली सिखाता है जो हमारे दिल को सुकून देती है।

जी, कौन सी बोली बोल रहा है तू? और वैसे भी पंछियों की बोलियां सुनने में ना हमें बड़ा ही मजा आता है। अब आपको सच बताऊं कि मेरे घर के आसपास तो काफ़ी सारे पेड़ भी हैं, कुछ वेजिटेशन भी है, छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं, जहाँ पर कि सुबह शाम पंछी आते ही हैं। और सामने में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें भी अभी क्योंकि नई नई बनी है तो वहाँ पर लोग जो हैं वो रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर भी पंछियों ने अपना डेरा जमाया ही हुआ है। तो कई बार तो आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स के अंदर कि किस तरह से वो काली काली जो कोयल है, मैना है, वहाँ पर बैठती है और सुबह शाम हमें एक प्यारा सा अदद गीत तो सुना ही देती है। तो चाहे हम शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी गांवों से अछूते बिल्कुल भी नहीं है। माहौल जो है ना आसपास का सारा गांव का ही है। बेशक हम MC एरिया में आ चुके हैं अभी तो। और श्रोताओं, हम गांव की ओर बढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन फिलहाल एक जानकारी ले लेते हैं हम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना के तहत मंगलवार को यानी कल शाम को धर्मशाला में एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। और ये देखिए, ये जानकारी भी हमारे इसी विषय से कुछ मिलती जुलती ही है। पेड़ पेड़ आपने कहाँ देखे हैं? पेड़ ज़्यादातर हमारे गांवों में होते हैं या फिर अब जो हाईवेज़ हैं तो हाईवेज़ के आसपास में कुछ पेड़ जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, ताकि भैया बिल्कुल सुनसान और उजाड़ जैसा भी नज़र ना आए और वहाँ पर थोड़ा हरियाली रहे और साथ में थोड़ी सी ठंडक भी रहे। तो अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज और परिवार में वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना को मजबूत करना था। इस अवसर पर SDM धर्मशाला मोहित रतन और जिला

जीवन संवारते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन, छाया, फल और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करते हैं। तो इसीलिए पौधा लगाना तभी सार्थक होगा जब हम उसकी नियमित देखभाल करेंगे और उसे वृक्ष के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर पौधारोपण करने तथा लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ करके अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान भी उन्होंने सब लोगों से किया।

और श्रोताओं, जब हम गाँव की बात आज कार्यक्रम में कर ही रहे हैं तो फिर से हम एक गीत ऐसा सुन लेते हैं कि हमें नाज होता है कि जब हमारे गांव में कोई आता है तो हमारे गांव में कितना कुछ देखने को उसे मिलता है। प्रोफेसर फिल्म का ये गीत है आशा भोसले लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

तो दोस्तों, गांव के लोग हमेशा मेहमानों का इंतजार करते हैं। वहां आज भी कोई अनजान मुसाफिर पहुंच जाए तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है, छाछ और रबड़ी पूछी जाती है। लेकिन शहरों में उल्टा होता है, फ्लैट्स के दरवाजे बंद रहते हैं, बाहर डोंट यानी डू नॉट डिस्टर्ब या फिर कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगा होता है। शहर अजनबियों से डरता है जबकि गांव अजनबियों को भी अपना लेता है, और ये गाना गांव के उसी खुले दिल और निश्चल प्यार का प्रतीक है।

तो शहरों में हम एसी और एयर प्योरीफायर के भरोसे सांस लेते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर नेचर की रील्स देख करके खुश होते हैं, लेकिन गांवों में आज भी कुदरत खुद आपका स्वागत करती है। वहां की ठंडी छांव और खेतों की हरियाली शहर के हर तनाव को मिटा देती है। आज फोटोग्राफी डे है और शहर के लोग महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों, गगनचुंबी इमारतों या सजे धजे कैफे की तस्वीरें तो मोबाइल में खींचते हैं, लेकिन उसमें वो लाइफ या सुकून नहीं होता।

तो अगर किसी फोटोग्राफर को असली जीवंत और रूहानी तस्वीरें खींचनी हो तो कैमरा खुद ब खुद गांवों की तरफ मुड़ जाता है। पसीने से तरबतर मुस्कुराता हुआ किसान, मिट्टी के घर की दहलीज पर बैठी दादी माँ, पगडंडियों पर दौड़ते वो बच्चे और ढलता हुआ लाल सूरज, ये वो परफेक्ट शॉट हैं जो दुनिया का सबसे महंगा कैमरा भी किसी शहर के आलीशान मॉल में नहीं ढूंढ सकता है।

जी, तो प्रोफेसर फिल्म का ये गीत सुना भी आपने लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनों की आवाजों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और आज आपको सैर करवा रहे हैं हम आप सभी के, यानी जिस जिसका भी जो जो भी गांव है, आप अपने दिमाग में तस्वीरें लीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और पहुंच जाइए अपने अपने गांवों में। अब आप कहेंगे कि हम तो गांवों में ही रहते हैं, अगर रहते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जैसे लोग कुछ जो अपने गांव छोड़ आए हैं, हालांकि मैंने आपसे कहा कि हम भी यहां पर भी गांव में ही रहते हैं, माहौल कुछ आसपास में ऐसा ही है, लेकिन फिर भी जो अपना पैतृक गांव है उसे हम याद करते ही हैं।

और आज हमारा जो कैमरा है वो गाँव की तरफ मुड़ रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि असली और खूबसूरत तस्वीरें तो हमारे गाँव में ही बिखरी पड़ी हैं। वो खेतों में काम करते किसानों की निश्चल मुस्कान हो, कुएं पर पानी भरती पनिहारने हो, और वो नीम के पेड़ की छांव हो, इन नज़ारों को जब भी आप अपने कैमरा में कैद करते हैं ना तो तस्वीरें बोल पड़ती हैं। तो चलिए इन तस्वीरों को अपने कैमरा में कैद करने के साथ साथ सुनते हैं ये गीत भी। और जब ऐसी डगर से हम चलते हैं तो ये गीत खुद ब खुद ही हमारे दिमाग में पीछे पीछे चल रहा होता है।

और श्रोताओं, इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10:15 हो चुके हैं और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कार्यक्रम में, तो आप लोगों के फ़ोन कॉल्स का समय भी हो रहा है। मैसेज कीजिए 7018111791 पर, या फिर आप हमसे लाइव बात भी कर सकते हैं। और विषय तो अब आप आज का जानते ही हैं, ये फोटोग्राफी और साथ में हमारे प्यारे गांव।

दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ से अनाउंस किया और यहाँ फोन कॉल आना शुरू भी हो गई है, लेकिन फिर भी हम श्रोताओं से गुजारिश ये करेंगे कि जो गीत चल रहा होता है उस गीत को पहले पूरा हो लेने दीजिए, थोड़ा बहुत उस गीत का आनंद भी उठाने दीजिए बाकी श्रोताओं को, और हम आपकी फ़ोन कॉल जल्दी ही लेंगे।

तो दोस्तों, अभी हमने कुछ ही दिन पहले मनाया है आज़ादी का जश्न 15 अगस्त की, पतंगे भी उड़ाई हैं, साथ में संक्रांति के त्यौहार की खुशियां भी बांटी हैं। तो त्यौहार आते हैं, चले जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं यादों का एक गहरा कारवां। और उन कारवां की जो साक्षी होती हैं, वो होती हैं हमारी तस्वीरें या फिर वो हमारा कैमरा, जिसमें कि हम वीडियो के रूप में उसे कैद कर लेते हैं। तो आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, जिसकी बहुत बहुत मुबारक आप सभी को।

जी, अब हम चाहते हैं कि जो श्रोता हमें कॉल कर रहे थे वो दोबारा से कॉल कर सकते हैं, अब हम उनकी कॉल ले सकते हैं। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करके ये तो बता सकते हैं कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको अपने गांव की याद आई या नहीं, या आप शुरू से ही शहरों में ही पले बड़े हैं, वहीं पर रहे हैं।

और श्रोताओ अब फिर से कॉल आ रहा है, कौन है श्रोताओ, कहाँ से हैं, आइए जानते हैं। फोन कॉल कट गई है, दोबारा इंतजार करते हैं इनकी कॉल का।

तो दोस्तों आज हम कितने एडवांस हो गए हैं ना, हमारी जेब में एक छोटा सा चलता फिरता यंत्र आ गया है, स्मार्टफोन। और इस 5 इंच की स्क्रीन ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में समेट दिया है और हम हो गए हैं इसके गुलाम। लेकिन हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि यही एक फ़ोन है जिसके ज़रिए लोग बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी तो कर रहे हैं।

0: परंतु फिर भी हम ये कहते हैं कि दुनिया इसी के कारण बहुत सिमट सी गई है। पहले हमें लगता था कि दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, एक किसी से मिलने भी जाना होता था ना तो ट्रांसपोर्ट के साधन भी इतने नहीं होते थे, लेकिन मन में खुशी इतनी होती थी कि अमुक व्यक्ति से हम मिलेंगे जा करके, तो उसको कितनी खुशी होगी। और इतनी कंजस्टेड हो गई है दुनिया कि अब साथ साथ समुंदर पार बैठा व्यक्ति भी पास लगता है, लेकिन पास वाले कमरे में बैठा इंसान दूर हो गया है। और फोन कॉल हमने ले ली है, आइए करते हैं बात इनसे। हेलो,
1: नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: मैम क्या हाल है, ठीक हो?
0: जी मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का के बारे में
1: मेरा परिचय है अनिल।
0: अच्छा अनिल बलोरिया जी, जी जी
1: जी जी
0: स्वागत है जी, बताएं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: सर्वप्रथम तो हाँ, सर्वप्रथम तो आप यही बोल रहे हैं गांव के बारे में
0: जी,
1: गांव के परिवेश के बारे में
0: जी,
1: तो सर्वप्रथम मैं यही बोलूंगी, अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा जहाँ जन्म हुआ वो भी गांव के परिवेश में ही हुआ।
0: कहाँ हुआ था जन्म आपका?
1: मेरा जन्म स्थान तो वैसे पंजाब में है।
0: अच्छा,
1: बाई बोर्न आई एम पंजाबी।
0: हाँ अच्छा, पंजाबी बोल रहे हैं, बोल सकते हैं आप।
1: मेरा जन्म स्थान पंजाब में है, मैं जगह पढ़ती हूँ मुकेरियाँ।
0: अच्छा जी,
1: होशियारपुर के पास, डिस्ट्रिक्ट
0: होशियारपुर के पास, ठीक है।
1: हाँ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मुकेरियाँ का गाँव है, मुकेरियाँ में पड़ता है गाँव, तो वहाँ जन्म हूँ मैं। तो उसके बाद मेरा जो चाइल्डहुड था बचपन वो सारा यही निकला, कुछ पंजाब में निकला, यहाँ में निकला
0: जी,
1: स्कूलिंग मेरी यहाँ की, एजुकेशन मेरी यहाँ की है।
0: अच्छा जी, अनिल जी कोई खास याद ऐसी जो श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे जिसको कि
1: जी, जी,
0: आप बहुत अभी सारी याद करते हैं?
1: हाँ बहुत सारी यादें हैं
0: जी, बताएं।
1: बचपन में मतलब इससे जीवन को, गांव के जीवन को मैंने बड़े ही मतलब

0: से है, बड़े ही क्लोज से जिया है, क्योंकि बचपन में भी हम गांव के परिवेश में, यहाँ भी हम इसको बोलते हैं कि गांव की जिंदगी में बहुत सारे अभाव होते हैं, पर अभाव भी होते हैं उससे एक आनंद भी होता है। जो आनंद की अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति होती है ना
1: जी,
0: वो आदमी को इतना जुझारू बना देती है ना कि पूछो मत। वो एक शहरी बच्चे के अंदर नहीं होती है
1: जी।
0: ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मतलब एक पूरा अभ्यास है।
1: हाँ जी,
0: हाँ गांव के बच्चे में कुछ कुछ वो कमियां रह जाती है, जो न्यूक्लियर जीवन में होता है उसमें जो एकांकी जीवन में वो कमियां रह जाती है, हमारे जीवन में वो कमियां नहीं रहती
1: जी। शुरू से एक्चुअली बच्चे जो है ना वो जुझारू होते हैं, उन्होंने देखा होता है कि माता पिता कितनी मेहनत करते हैं खेतों में, घर में अलग है ना,
0: बिल्कुल सुबह से शाम तक मेहनत करनी है ना, खुद मतलब गांव के जीवन में रहना,
1: खुद अपना अनाज उगाना है, खुद अपना ही खाना है ना, सब कुछ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: और उसमें एक आनंद की अनुभूति, इतना मजा आता है कि पूछो मत
1: जी।
0: हमारे वक्त में तो एक वक्त ऐसा था कि वहाँ गांव में टीवी भी नहीं हुआ करते थे, हल्के फुल्के रेडियो हुआ करते, उसमें से आनंद लिया करते थे।
1: तो
0: उसके बाद टीवी आए, कलर, फिर आप जैसे बोल रहे थे अभी गांव में आज उसको फोटोग्राफी बना रहे हैं, हमारे वक्त तो ऐसा जीव था जो कैमरा वो करते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे।
1: हाँ,
0: तो ब्लैक एंड व्हाइट से जो तस्वीर आती थी, तस्वीरों में ब्लैक एंड व्हाइट निकलती थी,
1: उसमें भी हमें सुकून मिलता था, बहुत अच्छा लगता था,
0: वो भी बड़ा अच्छा लगता था।
1: आपको पता है अनिल जी, मेरे पास तो ब्लैक एंड व्हाइट जो कैमरा है ना उसके भी 2-3 वर्जन अभी भी पड़े हुए हैं, मैंने बड़े संभाल के रखे
0: जी। वो हमारे पास भी है जी, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ही एक आनंददायक जिंदगी हमारी यहाँ।
1: अच्छा ठीक है, गाँव की बात तो हम कर रहे हैं, आपने कोई तस्वीर कभी ली अपने गाँव की? जैसे आप बोल रहे हैं कि कैमरा आपके पास अभी भी रखा हुआ है, कभी कोई तस्वीर? हाँ, हाँ, ली थी?
0: मेरे पास तस्वीरें यहाँ की है, यहाँ की भी है, पंजाब की है।
1: अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि हमारा ये जो लाइव वाला जो नंबर है ना जिससे अभी आप बात कर रहे हैं उस पर मैसेज करके वो तस्वीरें पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम कोशिश करेंगे फेसबुक पेज रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम उन्हें पोस्ट कर पाएं आज की तारीख में।
0: हाँ,
1: अनिल जी के इससे बात करते करते ही बाकी सभी श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अपने गाँव की कोई भी तस्वीर ऐसी है जिससे आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख करके और हमारे इस नंबर पर जो लाइव वाला नंबर है उस पर पोस्ट कर दीजिए ताकि हम उसे अपने फेसबुक पेज से आपके नाम और आपके गाँव के नाम के सहित पोस्ट कर पाएँ। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के लिए, तो आप जरूर कीजिएगा, कल भी कर सकते हैं जी।
0: बाकी एक बात और है, आप आज कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में
1: जी,
0: तो उसके बारे में हल्का सा बोलूंगा कि पर्यावरण की बात आप करते हैं
1: जल्दी।
0: तो मैं देख रहा कि कुछ प्रजातियां हैं पेड़ों की वो आज गायब हो चुकी है। हमारे स्कूल के नजदीक यहाँ पर जो अर्जुन के पेड़ हुआ करते थे आज देखने को नहीं मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: ऐसे न जाने कितनी प्रजातियां हैं जो गायब, तो किसी जो गायब हो चुकी हैं
1: जी।
0: तो मैं ये देखता हूँ कि कमियां हम लोगों सभी लोगों को हम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बचपन से मतलब लाजमी है, पर से पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता।
1: ऑक्सीजन तो चाहिए ही है, चाहे हमारी पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी
0: है। हम हर दिन बचपन से जब उठते हैं तब से ऑक्सीजन रात दिन ऑक्सीजन लेते हैं।
1: तो देखिए
0: करते हैं
1: अनिल जी, आपने सुना ही होगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जानकारी दी है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरू हो गया है अब तो, और आप भी अपने आसपास में कहीं ना कहीं पेड़ लगा ही सकते हैं। अगर किसी और की जमीन है तो पूछ करके लगा सकते हैं, अपनी हो तो वहाँ लगा सकते हैं, नहीं हो तो थोड़ा ग्रो बैग में ही लगा लीजिए, पेड़ ना सही छोटे मोटे प्लांट्स ही लगा लीजिए, ग्रीनरी जरूरी है ऑक्सीजन के लिए, है ना जी। रेडियो धर्मशाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही आपके साथ फिर जुड़ेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: धन्यवाद। धन्यवाद,
1: ठीक है जी, धन्यवाद।

तो श्रोताओ, अनिल बलोडिया जी बहुत सारी बातें कहना चाहते थे, अपने बहुत सारी एक्सपीरियंस बताना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा लंबी हो गई थी बात, और हम सोचते हैं कि शायद और श्रोता भी जुड़ना चाह रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा समय की कमी रहती है हमारे पास, और हमारे पास अभी जो लिस्ट में मैं गीत लेकर के आई थी ना, वो गीत भी बहुत सारे अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ उन गीत संगीत से आपका मनोरंजन भी करवाया जाए, जो कि मैं वाकई में आप सभी के लिए चुन चुन करके लेकर आई हूँ। और कौन सा अगला गीत है मेरा चुना हुआ, आइए जानते हैं।

श्रोताओं, नया दौर फिल्म का ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में हमने सुना। बेशक फिल्म है नया दौर, लेकिन हम आपको उस दौर में लेकर चल रहे हैं जहां पर हम रहते थे, गांवों में, या फिर हमारे ये जो शहर अब बन गए हैं ये भी गांव ही थे।

तो दोस्तों जब हम गांव की बात करते हैं तो सिर्फ खेतों और पगडंडियों की बात नहीं होती, बल्कि बात उस सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंस की भी होती है, उस सच्चे भाईचारे की जो सिर्फ इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच भी देखने को मिलता है। आज शहरों में क्या माहौल है हम सब देख रहे हैं। लोग अपने ही आसपास के जानवरों से डरने लगे हैं, खास करके गली के कुत्तों को लेकर आए दिन सोसाइटीज़ में झगड़े होते रहते हैं, लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, डर का एक माहौल सा बन गया है। लेकिन शहरों में जानवरों को देखने के लिए बच्चों को चिड़ियाघर यानी कि जू में जाना पड़ता है या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स दिखानी पड़ती हैं कि ये हमारे जानवर हैं। लेकिन हमारे गांवों का नज़ारा इससे बिल्कुल ही जुदा होता है। गांवों में सुबह सिर्फ अलार्म से नहीं बल्कि मुर्गों की बांग से, गाय भैंसों के रंभाने की आवाज़ से और भेड़ बकरियों के मिमियाने से होती है। वहां पर जानवर कोई बाहरी या खतरा नहीं होते हैं, वो तो परिवार का सदस्य होते हैं। और बात करें अगर उन वफादार कुत्तों की तो गाँव में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, वो किसी विदेशी ब्रीड के नहीं होते, हमारी अपनी मिट्टी के देसी डॉग्स होते हैं। तो गाँव का हर बच्चा हर बुजुर्ग उनके साथ खेलते हुए उन्हें अपनी रोटी का एक हिस्सा देते हुए ही बड़ा होता है। वहाँ कोई डर नहीं क्योंकि वहाँ प्यार है। वो कुत्ते को पूरे मोहल्ले की रखवाली अपनी जान दाव पर लगा करके करते हैं। तो देखिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी है ना, तो अपने जहन के कैमरे से ज़रा एक तस्वीर तो खींचिए। एक छोटा सा गांव का बच्चा जो धूल में सना हुआ है और उसके साथ पूंछ हिलाता हुआ वो गांव का वफादार कुत्ता, और अब कई लोग कहते हैं कि इसको कुत्ता नहीं कहना, चलो हम डॉगी कहते हैं, दोनों बिना किसी डर के एक दूसरे के गले लग कर के खेल रहे हैं। क्या ऐसी निश्चल और सच्ची तस्वीर आपको किसी शहर के आलीशान कैफे या फिर मॉल में मिल सकती है? कभी नहीं। तो गांव हमें सिखाता है कि हम सब मिलकर के कैसे रहते हैं, तरक्की की दौड़ में हम इतने आगे ना निकल जाएं कि अपनों से और इन बेजुबान दोस्तों से ही डरने लग जाएं।

दोस्तों ये गीत है मेले के माहौल का। यहाँ पर गाँव में लगा हुआ है मेला। जो हीरोइन है वो कह रही है अपने हीरो से कि भाई मुझे ले दे,

तो पवित्र पापी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थीं। ज्ञान में 92 MHz से गुड मॉर्निंग धर्मशाला, आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

फोटोग्राफी दिवस के साथ साथ हमने गांव की बातें भी की हैं श्रोताओं, और आगे भी कर रहे हैं। परंतु अब आपको बताते हैं कि 19 अगस्त को मनाया क्यों जाता है ये दिन, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। उस दिन फ्रांसीसी सरकार ने लुई डागुएरे की फोटोग्राफिक प्रक्रिया का पेटेंट खरीदा था तो और इसे दुनिया को उपहार में दे दिया था। ये वैश्विक आयोजन फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सम्मानित करता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समूह प्रकृति, शहरी जीवन और पोर्ट्रेट जैसे विषयों पर आधारित फोटो प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं, और समुदाय, दृश्य, कहानी, गहने पर चर्चा करने के लिए स्थानीय कार्यशालाओं, फोटो वॉक और वर्चुअल प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाता है। और फोटोग्राफी तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है ना श्रोताओं, कि आप चाहे जिस भी किसी चीज की फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं। पहले तो ये तरीका था ही नहीं, अपलोडिंग वगैरह नहीं होती थी, तो फोटो खींच करके आप अपने ही पास रखते थे, अपनी यादों में उसे कैद रखते थे। लेकिन अब तो आप दुनिया भर तक अपनी जो फोटोज हैं, पिक्स हैं खींची हुई, वो पहुंचा सकते हैं।

तो माया फिल्म का ये गीत तभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। और 11 बजने में अब सिर्फ 7 मिनट नहीं 6 मिनट बाकी हैं और इन 6 मिनटों में मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कौन सा गीत सुनवा दूँ और क्या क्या बातें आपके साथ कर लूँ। अभी आपने सुना तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, और हाँ आप लोग भी हमारी तस्वीरें अपने दिल में उतारते थे ना, लेकिन अब हमने थोड़ा सा सहूलियत दे दी है आप लोगों को, वो ये कि आप फेसबुक पेज से हमें लाइव देख सकते हैं। और फेसबुक पेज पर जब हम लाइव कर रहे थे तब एक कमेंट आया था, लेकिन उस वक्त हमें वो दिखाई नहीं दिया क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है। बाद में अभी हम देख पा रहे हैं अर्णव कोई हमारे श्रोता हैं तो वो लिख रहे हैं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो अर्णव जी ये बात तो सही ही है क्योंकि हम फेसबुक पेज पर लाइव नहीं भी होते हैं तो भी ये मुस्कान हमारे चेहरे पर ऐसे ही रहती है, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट आपको वहाँ रहता है ना उस पार रेडियो के उस पार हमें सुनने का, उतना ही हमें भी इस पार आपसे बातचीत करने का रहता है। और अगर खुश होकर के हम कार्यक्रम करेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए आप तक अपने दिल की बातें पहुँचाएंगे, जानकारियाँ देंगे, तो मुझे लगता है कि उस कार्यक्रम में चार चांद भी लग जाते हैं।

दोस्तों, अब मैं सोच रही हूँ कि एक तो गीत आपके लिए प्ले कर दिया जाए और साथ ही में थोड़ी सी खबरें भी ले ली जाएं। और ये जो कार्यक्रम है ना, ये आज यहीं तक सिमट के नहीं रहेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस कार्यक्रम का दूसरा पार्ट भी मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि ये जो गांव है ना, ये हमारे मन से कभी भी नहीं निकलते हैं, ये हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। वो हमें पता लगे या ना लगे या थोड़ी देर से लगे, वो अलग बात है, क्योंकि अभी इतने सारे गीत और इतनी सारी बातें इस कार्यक्रम में भी रह गई हैं। तो जिन्हें पूरा करने के लिए एक और कार्यक्रम भी लगेगा, और मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम बहुत सारे कार्यक्रम भी कर लेना तो भी इस विषय पर बात कम ही लगती है।

हालांकि ये जो गीत आ रहा है आपके सामने, ये आता है फिल्म नदिया के पार से, जसपाल सिंह, चंद्राणी मुखर्जी, सुशील कुमार की आवाजों में। और ये गीत आप सुनते हैं ज्यादातर होली के आसपास।

और अब जो खबरें आ रही हैं उसमें से एक खबर है कि कुल्लू के बाड़ी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील की खीर खाने के बाद 40 बच्चे हो गए हैं बीमार। अनुबंध कर्मचारियों को संशोधित पे स्केल का लाभ देने वाले एकल पीठ के फैसले पर लगा दी गई है रोक। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को राहत इसी माह मिलेगा बकाया एरियर। शुक्र है ये फैसला ले लिया गया। हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो और भी अच्छा हो।

0: विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस और भाजपा आक्रामक हो गई हैं एक दूसरे के लिए। तो आप जानते ही हैं कि 21 तारीख से यहां पर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है।
1: सारे गांव की गोरियां रंग गई हम पे डाल।
0: अब देखना यह है कि इस विधानसभा सत्र में यहां के लिए क्या निकल करके सामने आता है, यानी कि पूरे हिमाचल के लिए। और हाँ, एक खबर और भी निकल के आ रही है कि अब मोबाइल आउटलेट्स के जरिए भी हो सकेगी शराब की बिक्री। भाई साहब, हम तो सोच रहे हैं कि प्रदेश में चल रहा है नशा मुक्ति अभियान, और उसकी जो शुरुआत होती है वो पहले तो इसी चीज से होती है। तो आप लोग जो हैं उसे बंद करने के बजाय, मतलब थोड़ा कम करने के बजाय, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि अब तो आप मोबाइल आउटलेट से भी खरीद सकते हैं। तो आप नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं या फिर इसे बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ ज्यादा समझ में ना आ नहीं रहा है। मैं तो कन्फ्यूज ही आ गई हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है बाहर भी लोगों का यही हाल होगा। चलिए अब कार्यक्रम में इसी गीत के साथ ले लेते हैं हम भी विदा। जल्द ही, मैंने कहा ना आपसे, फिर मिलूंगी और ऐसा ही एक कार्यक्रम और लेकर आऊंगी। जो बातें आज रह गई हैं वो करेंगे हम उस कार्यक्रम में पूरी। तब तक के लिए ज्योति पठानिया को दीजिए अनुमति। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ

0: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
1: मामा नो शेयरिंग।
0: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
1: कौन था?
0: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
1: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
0: स्मार्ट गर्ल।
1: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
0: याद है ना, नो शेयरिंग।
1: मामा
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
4: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
2: टीवी देखने बुलाएंगे?
4: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
5: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
4: क्यों?
5: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
4: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
6: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
7: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
8: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
7: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो, दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मतलब बोलने का पावर दिया है। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपने वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.5 ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो विंचन धर्मशाला। और एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ दोस्तों एक नई बातचीत के साथ। दोस्तों कार्यक्रम आप सभी सुनते हैं हर हफ्ते मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, जिसमें कि हम जानते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें और हो सके तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो भी हम जरूर करें, क्योंकि उसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हेल्थ पे पड़ता है। तो आप सभी इस प्यारी से कार्यक्रम में और इस बातचीत में जुड़ते हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: सभी के लिए मतलब कि खास जानकारियों के साथ जुड़ते हैं और बहुत ही खास मोमेंट रहता है ये हम सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि मैम अपना इतना कीमती समय जो है ना वो हमारे लिए निकाल कर यहाँ तक आते हैं, तो बहुत खास बात है। लेकिन हमें भी इस अहमियत को समझना है और इस समय की वैल्यू को समझना है। तो स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से इस प्यारे से कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच रुचिका
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे?
0: बहुत अच्छे हैं। रूटीन कैसी चल रही है?
1: बहुत क्योटिक बट गुड
0: जी। तो मैम मैं थोड़ा सा पहले आपसे अपनी आपकी ना डेली रूटीन के बारे में जानने जा रही हूँ, क्योंकि जो आप क्लिनिक में अपने सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो है मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को फेस करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे दोस्तों को उस शेड्यूल, उस रूटीन के बारे में बताइए।
1: देखिए मॉर्निंग में भी कुछ

0: किसी को रुलाना नहीं है जी,
1: क्योंकि हमारे सारे भाव महत्वपूर्ण है रुचिका
0: जी।
1: तो कई बार ना हम सोसाइटी में रहते रहते हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमारे एक इमोशन तो बहुत अच्छा और बाकी इमोशन तो बहुत खराब है, तो हम खुद ही अपने ही साथ अपनी भावनाओं के साथ बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। एंड बिलीव मी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब जनता में आई थिंक मैक्सिमम लोग इस प्रकार के ही सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, सिर्फ उनकी हेल्थ पर ही नहीं बट उनकी रिलेशनशिप्स में भी। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतों के अनुसार उनको वो ऑफर किया जाता है थेरेपी सेशंस में, जो उनको हील करने में, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने में उनको सहायता देगा। बस ऐसे ही करते करते दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, घर जाते हैं तो तब भी कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं तो बस रात के 9 बजे तक हमारा टाइम सारा सेशंस में जाता है
0: जी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य की, तो जैसे आप अलग अलग तरह के पेशेंट्स के साथ मिलते हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं, तो खुद के मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे उस समय, क्योंकि अब आपने जैसे कहा कि कुछ क्लाइंट्स को हंसाना पड़ता है तो कुछ को रुलाना भी पड़ता है, उस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कई बार होता है दूसरों को देख के अपना मानसिक संतुलन जो है वो कहीं खो बैठते हैं, तो उसमें आप किस तरह से काम करते हैं?
1: देखिए, जब हम लोगों की ट्रेनिंग होती है ना, उस दौरान ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें कब सामने वाले के शूज में जाना है और कब अपने शूज में वापस आना है
0: जी।
1: एक होता है कि अगर आप अपने शूज में ही बैठ के सामने वाले व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो चोट है, आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी, जिस तरीके से भी अपने सेशन के फ्लो को एक रुख देना चाहेंगे, वो उनके लिए उतना इफेक्टिव या एफिशिएंट साबित नहीं होगा। इसलिए अपने जूते उतारना जरूरी है। जब हम सामने वाले के शूज में जाते हैं तब हम उनके पेन को, उनके दर्द को, उनके अकेलेपन को महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि वो कौन सी कड़ियां हैं जो अभी भी बंद हैं, जिनको अनलॉक करना जरूरी है, वो कौन से पीड़ाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा कष्ट पहुंच रहा है। तो कुछ इस प्रकार से जब आप उनकी परेशानियों का आभास ले पाते हैं तब अपने शूज में वापस दोबारा आना पड़ता है और उनके दुख को थोड़े डिस्टेंस के साथ देखना पड़ता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जैसे डिटैचमेंट, आपने सुना होगा वर्ड, है ना
0: जी।
1: ये है वो वैराग्य जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। So this is something that helps me a lot, Ruchika.
0: जी, तो कई बार ऐसा भी हुआ है आपके साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता रहता है जब हम किसी के साथ कोई केस डिस्कस कर रहे हैं या किसी की काउंसलिंग कुछ लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन हमें उस पर कोई भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं नजर आ रही हैं, कोई रिजल्ट्स जो है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो गुस्सा आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी आपके साथ कभी हुआ है?
1: गुस्सा तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी तो कारण ही होगा ना?
0: होंगे जी,
1: है ना
0: जी।
1: और हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस होता है
0: जी।
1: सो अगर कोई व्यक्ति उसी जगह पर रुका हुआ है और वो उस जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका अपना एक पर्पज है
0: जी,
1: और वो पर्पज जब तक फुलफिल नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको वहां उस परिस्थिति में रह के जो लेसन लेने हैं, जो लेसन को इम्प्लीमेंट करना है, जब तक वो नहीं करेगा तब तक वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा
0: जी।
1: जिसके कारणवश ये सोचना कि अब तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है या ये तो डिसअपॉइंटिंग है या गुस्सा आ रहा है, ये तो थोड़ी बेवकूफाना वाली बात हो जाएगी
0: जी बिल्कुल। तो मैं इस बात पे आपको इसलिए लेकर आ रही थी क्योंकि आज हमारी जो ये बातचीत रहने वाली है वो इसी से जुड़ी है, और कई बार क्या हम आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं अपने आसपास, खास करके बच्चों को या युवाओं की हम बात करें तो बहुत जल्दी जो है हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी बात को एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से उस पर रिस्पॉन्स दे देना, और उस वजह से जो है सिचुएशंस बनने के बजाय जो वो बिगड़ जाती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ये गुस्सा होता क्या है और ये किस तरह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ेंगे।

0: दोस्तों इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे से और स्वीट से मेहमान। तो आइए दोस्तों बैठते हैं अपनी इस प्यारी सी बातचीत, प्यारे से कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि गुस्से की वजह आखिर क्या हो सकती है, या गुस्सा जब भी हमें आता है तो कोई ना कोई रीजंस जो है वो जरूर रहते हैं। तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये गुस्सा होता क्या है और कैसे हम इसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इस पे काम कर सकते हैं। मेन हम यही बोल सकते हैं कि इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं।
1: सुरुचिका, गुस्सा सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है
0: जी।
1: हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारा दुख, हमारा सुख, हम सरप्राइज हो जाते हैं, हम शॉक हो जाते हैं, हमें गिल्ट होता है, हमें एक प्रकार से कभी हमें करुणा में महसूस होता है, तो कभी हमें ईर्ष्या होती है। तो ये सारे ही इमोशंस जो हैं ये बहुत ही क्लियर है अपने आप में, लेकिन गुस्सा एक ऐसा इमोशन है अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन सबसे ये सब होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है जिसके कारणवश बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं पर अपने रिश्तों में भी, और रिश्तों से बाकी के जीवन में भी परेशानियां लाता है
0: जी।
1: गुस्से को ऐसा मानिए कि ये एक प्रकार का मुखौटा है, ये एक ऐसा मुखौटा है जो सामने वाले को कुछ सर्टेन चीजें महसूस कराना चाहता है, जैसे कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं, क्योंकि हमारी आवाज ऊंची हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारे अंदर एक प्रकार की पावर महसूस होती है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं पावरफुल हूं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एंगर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू अदर पीपल इन आवर सराउंडिंग, कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं इस एनवायरमेंट को, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। अब ये है मुखौटा, ये है बाहर। हमारे भीतर या समझिए कि प्रकृति में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो बैलेंस के आधार पे चलती है। अब इसी प्रकार से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी बैलेंस को ही रीच आउट करती है। अब अगर हमारे बाहर, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में ये गुस्सा इस प्रकार से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग, इट मीन्स हमारे बिनीथ, एज एन इस मास्क के बिनीथ या हमारे भीतर कुछ ऐसा है जहां पे व्यक्ति को लैक ऑफ कंट्रोल महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को पावरलेस महसूस हो रहा है, जहां पर व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ गया। अब आप समझ रहे हैं कि
0: एक्सटर्नल,
1: डेफिनेटली एक्सटर्नल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ व्हाट्स इनसाइड ऑफ अस। तो गुस्सा सिर्फ एक मास्क है, उसके भीतर ये सारे भावनाएं हैं। ये कहां से आ रहे हैं, हेल्पलेसनेस कहां से आएगी, या एक प्रकार से पावरलेसनेस, या कुछ कंट्रोल नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया, ये भावनाएं कहां से आएंगी? ये आएंगी डिसअपॉइंटमेंट से, ये आएंगी हर्ट से, ये आएंगी फियर से। तो जब जब इंसान फियरफुल स्टेट में हो वो अपने फियर से फाइट करने के लिए गुस्से में आ सकते। आपने देखा होगा जब जानवर डर जाता है, उनको लगता है कि मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो वो अपने डिफेंस में आप पर अटैक कर देते।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि गुस्सा।
0: एग्जाम्पल के लिए हम सांप को ले सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन पे अटैक करने वाले, इसलिए वो
1: अटैक
0: करते हैं।
1: डेफिनेट, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर, वो वायलेंट बिहेवियर, वो हार्मफुल बिहेवियर के पीछे का क्या कारण है? फियर। सिमिलरली आप देखेंगे हर्ट, लेट्स से एक कपल है, चीट कर दिया, बहुत हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ, इतना हर्ट हुआ कि व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने सामान तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, रिश्ता तो तोड़ा है
0: जी।
1: तो दैट फॉर्म ऑफ एंगर इज अगेन इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, फ्रॉम हर्ट। अब इसी प्रकार से अब लेट्स से पेरेंट एंड चाइल्ड है, बच्चे के मार्क्स कम आए, पेरेंट गॉट डिसअपॉइंटेड, पेरेंट्स क्या करेंगे? गुस्सा। गुस्सा तो एज मास्क एक जैसा ही है, पर गुस्से उस मास्क के पीछे का जो कारण है वो अलग अलग
0: कुछ हो सकता है।
1: तो जब आपने पूछा ना कि गुस्सा क्या है, तो गुस्सा तो एक बहरूपिया है
0: जी।
1: आपको उस बहरूपिये के पीछे छुपे हुए भावनाओं को समझना है और उनको एक्सप्रेस करना है। जब ये कर पाता है व्यक्ति, तब वो अपने आप में बहुत सेल्फ अवेयर हो जाता है, उसे पता होता है कि उसको एग्जैक्टली किस क्षण पर क्या चाहिए, उसे क्या बुरा लगा है, उसे क्या ठेस पहुंची है, वो अपनी बात को किस प्रकार से सामने खूबसूरती से सरलता से रख सकता है। कमिंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इट। पहली चीज तो ये कि हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये बहुत ही अचंभे की बात है कि कैसे हमें लगता है जैसे हमें हर चीज को कंट्रोल करना है
0: जी,
1: जबकि प्रकृति में कुछ भी कंट्रोल होने के लिए बनाई नहीं। प्रकृति में हर चीज फ्लोइंग स्टेट में है। आप नदी को देख लीजिए, ओपन है
0: बिल्कुल।
1: समंदर को देख लीजिए, ओपन है। आकाश को देख लीजिए, बादलों को देख लीजिए, ओपन है। हवा को देख लीजिए, आप पकड़ के दिखा लीजिए। तो स्वच्छंद स्वतंत्रता प्रकृति का अपना आचरण है और हम प्रकृति से भिन्न नहीं, हमारी भावनाएं प्रकृति से भिन्न नहीं, ये सब एक है। इसलिए हमें ये समझना है, हमें अपने पर्सपेक्टिव में, अपने नजरिए में इस बदलाव को लाना है कि हमारी जो भावनाएं हैं हमें उन्हें अंडरस्टैंड करके उनको फ्लोइंग स्टेट में रखना है। हाँ, उनका ख्याल रखना जरूरी है वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन कंट्रोल करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है।
0: लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि जब भी कोई बच्चा ही गुस्सा कर दे तो पेरेंट्स हो या फिर हम जो भी देख रहे होते हैं वो तो यही बोलते हैं भाई गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अक्सर यही बात
1: आपको पता है रुचिका, हमें कंट्रोल करने का भाव कहाँ से आता है? जब हमें लगता है कि ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, जब हमें लगता है कि ये तो इतना अनसर्टेन है दैट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, जब हमें वो चीज समझ में नहीं आती तब हम सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं और हम डर जाएंगे। एनीथिंग दैट इज अनसर्टेन विल लीड अस टू फील फियरफुल एंड फियर विल आस्क अस टू कंट्रोल एंड दैट विल लीड अस टू एंगर। तो ऐसा मानिए कि बच्चे का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अगर पेरेंट को गुस्सा ही करना पड़ रहा है
0: जी,
1: तो ये बहुत दुख की बात है और इस बात में कोई सेंस नहीं,
0: बिल्कुल सेंसलेस। जी तो दोस्तों, बहुत ही ये गंभीर सी बात और ये शब्द अक्सर हम सभी बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, क्योंकि अक्सर हम यही बोलते हैं कि गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, गुस्सा आ रहा है तो उसे पहले दांतों से दबाया जाए, फिर खुद को वो किया जाए, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे खास करके कोई दीवार से सर मार रहे हैं या पंच कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी तरह से अगर हम किसी और भी नहीं उतार सकते तो ऐसी चीजों से हम गुस्से को कंट्रोल करने की जो हम अक्सर कहते हैं तो वही चीज हम करते हैं। तो अभी अभी आप सभी ने जाना दोस्तों कि गुस्से को कंट्रोल जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो मे बी इसके बारे में हम और भी जानेंगे, बहुत कुछ जानेंगे क्योंकि ये बहुत खास बातचीत आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मन संवाद के माध्यम से। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और बहुत ही खास ये बातचीत कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर से आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी को।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे। और गुस्से की बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन आज आप जान रहे हैं कि असल में गुस्सा क्या होता है और किस तरह से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैम, अभी हमने जाना कि गुस्सा क्या होता है और ये भी जाना कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम मैनेज कर सकते हैं, तो किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए, जितना हम लोग गुस्से को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ही ज्यादा गुस्सा हमारे लिए सरल होता जाता है और वो हमारे लिए उस पाथ ऑफ एक्सप्रेशन को भी और सरल बना देता है। देखिए, आप ऐसे मानिए कि गुस्सा एक छोटा सा बच्चा है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान से समझा ही नहीं
0: जी,
1: किसी ने उसको गौर से सुना ही नहीं, उसकी नीड्स क्या हैं उनको फुलफिल किया ही नहीं। तो अगर एक ऐसा बच्चा हो जिसकी नीड्स निग्लेक्टेड है, जो अनसीन है, अनहर्ड है, सप्रेस्ड है, तो उसे कैसा महसूस होगा, है ना? खराब महसूस होगा। और वो अपनी तरफ से फिर पूरा प्रयास करेगा ये बताने के लिए कि देखो मैं हूं, आप मुझे इतना निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी एग्जिस्टेंस आपके लिए मायने ही ना रखे, आप मुझे कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे पसंद ना करें या पसंद करें वो एक अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। और उस चीज को आप तक कन्वे करने के लिए आपका ही गुस्सा आपके थ्रू, आपके माध्यम से, आपके व्यवहार में धीरे धीरे ऐसे उतरने लगेगा कि आपका जो एक सेंस ऑफ जजमेंट होता है वो बहुत पुअर होता चला जाएगा। सो देन योर एंगर विल चूज टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। इसीलिए आपने देखा होगा सोसाइटी में आजकल कितने ज्यादा डिस्ट्रक्शन वाले केसेस आ रहे हैं, जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर फिजिकल अब्यूज इस कदर किया जाता है जिसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। दैट्स कम्प्लीटली अनइमेजिनेबल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपने ही गुस्से को इतना दबाया है। अब वो बोल रहा है आपसे, चीख चीख के बोल रहा है कि तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, और तुम मुझसे दूर भागोगे तो मैं तुम्हारे व्यवहार के थ्रू तुम्हारे रिश्तों में ऐसा पॉइजन स्प्रेड करूंगा कि तुमको तब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, और अगर तुम तब भी देखोगे तो कोई बात नहीं, बाकी लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। So it becomes so observable and so measurable that how anger is impacting someone's life. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की।
0: जी,
1: देखिए, एक्सप्रेस करने के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करेगी, अगर आप नदी पर बांध लगा देंगे तो क्या होगा एक समय के बाद?
0: वो तो फिर
1: वो बांध तोड़ के निकलेगी,
0: जाएंगी।
1: यस, और जब वो बांध तोड़ के निकलेगी तब हर जगह डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसी चीज को बचाने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हमारी नदी का प्रवाह कैसा है, हमारे नदी का स्वभाव कैसा है, उसकी नीड्स क्या है। अब किसी का प्रवाह ज्यादा तीव्र हो तो उसकी नीड्स अलग प्रकार की होंगी, तब हमें प्रोबेबली मल्टीपल चैनल्स बनाने पड़ेंगे जहां पे उसकी तीव्रता को थोड़ा कम किया जा सके और उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए, मैनेज करते हुए ईजिली स्मूथली रिलीज किया जा सके विदाउट कॉजिंग एनी डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द वे कि वी हैव टू टेक मेजर्स विच आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर फॉर द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली, अगर आपका नदी ऐसी है जो जिसकी तीव्रता नहीं है, कम है, जो शांत स्वभाव की, तो ऐसी नदी के लिए हमें बहुत ज्यादा
0: मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि वो प्रवाह का रुख रुकना नहीं चाहिए। जैसी प्रवाह का रुख रुकेगा वैसे ही अंदर जो लाइफ है पानी के वो मरनी शुरू हो जाएगी
0: जी,
1: एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। और फिर वो एक वॉल्केनो की तरह बाढ़ लेकर जब वो फटेगी आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अपने स्वभाव को समझना है। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव को समझेंगे, जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि आपको किन चीजों की आवश्यकता और किन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए, इस प्रकार की ये जो सेकंड एग्जांपल हमने दिया, अगर ये चीज वो व्यक्ति इंप्लीमेंट करने लग जाए जिसका नदी का प्रवाह यानी कि गुस्सा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए ये चीज वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जो कि सेकंड टाइप ऑफ पीपल के लिए दे सकती है। सो दैट्स हाउ इट इज, जितना अंडरस्टैंड करेंगे एंगर को उतना बेटर होता है। अब एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव हम सभी जानते हैं तो हम उसमें जाएंगे नहीं. बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेशन की एंगर के लिए. देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका प्राइमरी इमोशन क्या है, उस मास्क के बिनीत क्या इमोशन है. इज इट फियर, इज इट हर्ट, इज इट डिसअपॉइंटमेंट. आप समझ पाएंगे फिर कि आपको अपने फियर को एक्सप्रेस करना है कि हर्ट को एक्सप्रेस करना है कि डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करना है. जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती हैं, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग में चेंज आ जाएगा, हमारी हार्ट बीट में चेंज आ जाएगा, हमारे जो मसल्स हैं वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी, हमें अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होगी. ऐसे लोग जिनका बीपी लो हो रहा है और अगर उनके आसपास के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे और उनका सिरदर्द और बढ़ा रहे हैं, तब देखिए उनको जो गुस्सा आता है सारा बीपी लो एक साइड और सडनली उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कि तुम चुप हो जाओ. राइट. तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे भीतर हो रहे हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उस दौरान में हम क्या इंग्रेडिएंट्स, इट्स लाइक अगर एक यज्ञ चल रहा है और आप उसमें क्या आहुति डाल रहे हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि वो उस यज्ञ की अग्नि को बढ़ाएगा या कम करेगा. तो आप ऐसे सोचिए कि आपका जो गुस्सा है वो भी हवन कुंड के प्रकार ही है.
0: कम हो गए
1: आप हवन कुंड ऐसा मानिए.
0: तो वही आ गया ना, आग में घी डाल.
1: हाँ, अब आप आग में पानी डाल रहे हैं या आग में घी डाल रहे हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो क्या चीजें हैं जो घी का काम करेंगी आपके लिए, आप उनकी एक लिस्ट बना ले और अपने आसपास जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दे कि देखिए जब हम गुस्से में हो तो ये घी का काम करेंगे, इनको मुझसे दूर रखें, दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल फॉर मी. और उन चीजों की भी लिस्ट बना ले जो पानी का काम करेंगे और वो भी शेयर कर दे, और अपने पास उन चीजों को रखें भी जो पानी का काम करने वाली है. यानी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, आपके लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके गुस्से के लिए क्या चीज काम कर रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज अच्छे से काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है. ये दोनों में डिफरेंस पता होना रुचिका बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जीवन को बहुत सरल बना देता है. अब जो चीजें पानी वाली हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें. मे बी गो आउट एंड रिलीज योर एनर्जी, क्योंकि गुस्सा जो है दैट इज एनर्जी, गुस्से में हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाती है. तो आप अपना एक स्पेस ले लें, एक थोड़ा टाइम ले लें और आप उस एनर्जी को रिलीज कर दें. आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भस्त्रिका कर सकते हैं या कपालभाति कर सकते हैं, वो आपके गुस्से को रिलीज करने में मदद करेंगी. उसके बाद आप अनुलोम विलोम से करते हुए भ्रामरी आ सकते हैं और भ्रामरी के बाद आप थोड़े समय के लिए बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. इस फ्लो में अगर आप ये चीजें करते हैं, गिवन दैट कि किसी प्रकार की लोगों को एलर्जी ना हो जिसमें ये प्रकार के प्राणायाम उन्हें इम्पैक्ट करते हो, जैसे प्रेगनेंसी हो गया या कोई सर्जरी हुई हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, इन बातों का जरूर ध्यान रखें हमारी ऑडियंस. तो अगर ये सब चीजें इस तरीके से फॉलो करी जाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो रहा है. गुस्से में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है रुचिका, क्योंकि ब्रीदिंग अपने आप चेंज हो जाती है और ब्रीदिंग से हमारी सारी चीजें इंटरनली कनेक्टेड होती है. तो अगर हम प्राणायाम इसमें इन्वॉल्व करते हैं या एक्सरसाइज जिसमें ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दें या जैसे रनिंग हो गया, रनिंग इन्वॉल्व कर दें, तो इस प्रकार की चीजें हमारे गुस्से को रिलीज होने में बहुत सहायता दे सकती है. देयर इज वन थिंग दैट आई प्रैक्टिस पर्सनली, आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, अ मेंटल चैलेंज, कि या तो इस गुस्से को अभी गिव अप कर दो, इस गुस्से को कनेक्ट विद द प्राइमरी इमोशन राइट अवे, और अगर नहीं कर रहे हो तो तब तक के लिए पुशअप्स करते रहो. सो देर इज अ फिजिकल चैलेंज, लाइक फिजिकल एक हमारे पास टास्क है, एंड देन देर इज अ मेंटल टास्क. नाउ आई हैव टू पिक और से माई ईगो हमारे अहम को चूज करना है, वॉट इज इट दैट आई वॉन्ट टू गिव अप फर्स्ट, द साइकोलॉजिकल चैलेंज और द फिजिकल चैलेंज. फिजिकल चैलेंज तो हम ऐसे मान लेते हैं कि हम तो इसको तो गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं है. तो यानी कि आई विल कीप ऑन डूइंग पुशअप्स तब तक जब तक हमारा गुस्सा साइकोलॉजिकल लेवल से गिव अप ना हम करते, सरेंडर जब तक हम ना करते. एंड दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली वर्क सो वेल फॉर मी. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए काम करे, इसीलिए हमने बोला कि अपने आप को जानना, अपने आप के साथ बैठना, अपनी भावनाओं को अंडरस्टैंड करके अपने लिए, खुद के लिए एक डी एस्केलेशन प्लान क्रिएट करना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सभी को हमें लगता है करना चाहिए, और इस तरीके से आप डेफिनेटली अपने गुस्से को एक सही दिशा दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा है मैम ने। तो जिस तरह से एक्सरसाइजेस मैम ने बताई, मैं ये पूछने भी वाली थी कि हाँ सभी लोग जो है उसको तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ को अपने अपने इश्यूज, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं।
1: तो डेफिनेटली देखिए, एक्सरसाइज नहीं है तो आप प्राणायाम कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: प्राणायाम नहीं है तो फिर आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को लिख कर अपनी डायरी और पेन लीजिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ दीजिए, जला दीजिए, उड़ा दीजिए, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पीस ऑफ पेपर जहां पर आपने वो लिखा है। टॉक टू समबडी, शेयर अबाउट इट, रिलीज दैट एंगर, एंड देन थिंक ऑफ इट, व्हाट वाज इट ट्राइंग टू कन्वे टू मी।
0: जी, और सबसे खास बात की ये सब करने के लिए हमें अपने आप को जानना
1: बहुत जरूरी,
0: बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम जानते ही नहीं है। हम अपने आस पड़ोस के लोगों का या अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ जानते होते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं। हमारी अपनी क्या जो खुशियां हैं, या अपने क्या शौक है, क्या टैलेंट हमारे अंदर है, या तो कई बार हम दूसरों के चलते उसे बाहर निकाल नहीं पाते हैं, किसी को बता नहीं पाते हैं, या तो हम खुद ही नहीं जानते हैं। तो इन चीजों के लिए, या कोई भी हमारी हेल्थ इश्यू है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो जब तक हम अपने आप के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इन बीमारियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या अपने गुस्से को समझना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्हें खुद को पता होता है कि भाई अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है। वो पहले से ही अपने जो जान पहचान के होते तो उन्हें बोल कर रखा होता है कि भाई जब मेरे को गुस्सा आ जाए तो या तो ऐसी कोई हरकत, जैसे आपने कहा ना कि वो घी डालने वाली बात ना करे, तो वो पहले से उन्होंने कन्वे किया होता है कि भाई उस समय मेरे से कोई भी जो है बात ना ही करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि गुस्से में मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, या क्या क्या मैं रिएक्शन जो है वो कर जाती हूँ या कर जाता हूँ। तो इसी तरह से हमें जो है मैनेज करना जो है अपने गुस्से को, तो उसके लिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो और भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से प्यारे से ब्रेक के बाद। आप सभी सुन रहे हैं गुंजन रेडियो 91.2 FM, रुचिका और प्रियशी के साथ मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर।
1: जी दोस्तों, तो हमारा जो ये प्रयास है ये भी आपके मन की ओर तक पहुंच रहा है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आइए इस बहुत ही खास बातचीत को जो है आज के कार्यक्रम में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने गुस्से को मैनेज कर रहे हैं। तो मैम, हमने बहुत सारी बातें की गुस्से के बारे में, तो गुस्से को कैसे मैनेज करना, जब गुस्सा आ ही गया उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हम उसको एक प्रोसेस में ला सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमें गुस्सा आए ही ना, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि हमें मैनेज करने की जरूरत पड़े। क्या ऐसा भी कोई टिप्स है या ऐसा कोई रूल है जिससे हम उससे बच सकते हैं?
0: देखिए रुचिका, गुस्सा वैसे अपने आप में एक बहुत ही साधारण सा भाव है। हमारे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास हर प्रकार के भाव होते हैं और ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिसीजंस के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि भावनाओं में कभी भी भेदभाव नहीं करने चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि क्या इससे हमारी सेहत को हार्म होता है, तो यस, डेफिनेटली हार्म होता है। इसलिए हम अपने ओर से जितना प्रयास कर सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वो हमें करना चाहिए हर संभव प्रयास के नजरिए से। अब जैसे आपने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें गुस्सा ना आए
1: जी,
0: तो हम ये बोलेंगे कि गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से में कितना बहना है ये हमारे हाथों में, और उस गुस्से से हम कितना इम्पैक्ट हो ये भी हमारे हाथों में। यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी अवेयरनेस के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या चीजें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी के आधार पर या रियलिटी के आधार पर ऐसा समझिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर कुछ है, सब चीजें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, और ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनसे हम डिसएग्री करते होंगे या जिनको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते होंगे। बट जीवन में इस प्रकार से तो हम जी नहीं सकते जहां पर ये चीजें हो ही ना कम्प्लीटली, क्योंकि जीवन तो ऑल और नन में काम नहीं करता, इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल शेड्स। तो हमें हमारे अंदर उन सभी शेड्स के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और बस इतना ध्यान रखा जा सकता है कि अपने वातावरण में ऐसे लोग हों जो हमारी बातों को समझें, और अगर समझ ना पाए तो कम से कम उनका आदर रखें, उनकी इज्जत रखें। सिंपली देखा जाए तो अधिकांश लोगों को गुस्सा तब दो तीन एस्पेक्ट्स में आता है। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है और उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा तब आता है जब कुछ वो इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं, तो ऐसे लोगों के भीतर एक प्रकार की एक्सेप्टेंस और ओपननेस होनी भी जरूरी है, और ये समझना जरूरी है कि वो अपने आप को उस इनजस्टिस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड देम। वो अपने वातावरण में एक स्क्रीनिंग करें और देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस प्रकार के इनजस्टिस को ईदर टॉलरेट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर खुद वो इनजस्टिस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। इस प्रकार की हेल्दी बाउंड्री जब रहेगी तब इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा, और जब इंसान खुद में हेल्दी रहेगा तभी वो इस प्रकार के इनजस्टिस के अगेंस्ट कुछ काम कर पाएगा, कुछ एक्शन ले पाएगा, कुछ मदद कर पाएगा सोसाइटी में। तो इसीलिए एक प्रकार से वो दूरी बना के रखना ऐसे लोगों से, ऐसे वातावरण से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कुछ यही चीजें हैं, और उसके अलावा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अपने आप को रिमाइंडर्स देना, एंकर्स सेट करना, एंकर्स ऐसे कि हमें कौन से इमोशन को ज्यादा ध्यान देना है हम उसको चुन सकें, हम ये चुन सकें कि हम अपने जीवन में प्रेम से ऑपरेट करें, लव से ऑपरेट करें, रादर देन फियर से या फिर इनसिक्योरिटी से या डिसअपॉइंटमेंट से। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो आपको हर जगह मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है और कभी भी मिल सकती है, क्योंकि आप खुद भी लोगों को डिसअपॉइंट करते होंगे। इसलिए अपने अंदर वो ओपननेस, वो एक्सेप्टेंस और रियलिज्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, तो वो चीजें हमें जाननी होंगी कि जिस जिस वजह से हमें गुस्सा आता है, तो उससे फिर हमें खुद ही थोड़ा सा जो है बैक स्टेप लेने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, आप उन चैनल से एंगेज ही मत करिए जहां पर आपको पता है पांव रखते ही आपको
1: फिसलना
0: होगा। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, हम वैसे भी जब हमें लगता है कि आग से हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा तो हम जानबूझकर उससे आगे नहीं जाते हैं। तो गुस्सा भी उसी तरह से समझ लीजिए कि उससे भी कोई ना कोई हार्म जो है हमारी जो है मानसिक हेल्थ को होगा या हमको होगा किसी, क्योंकि मानसिक हेल्थ भी हमारी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है पूरी तरह से होता है,
0: वो फिजिकल हेल्थ में जरूर कन्वर्ट होगा।
1: जी,
0: जितने भी लोग हैं जो अपने गुस्से को दबा के रखते हैं उनके भीतर आप देखेंगे आज से कुछ सालों के बाद उनके भीतर बीमारियां आएंगी ही आएंगी।
1: जी, तो अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये सारी जो भी हम आप सभी तक बातें पहुंचाते हैं या जानकारियां पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इस पे जरूर काम करेंगे या करते होंगे। तो आज का ये बहुत ही खास जो सेशन था आप सभी के लिए, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों इसी तरह से और भी ढेर सारी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाएंगे स्टेप बाय स्टेप जी दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक और खास बात आप सभी जानते ही हैं वैसे तो, लेकिन फिर से बता देते हैं कि अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको भी ऐसी कुछ बातों से फेस होना पड़ रहा है और शायद हमारी इस बातचीत में भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ ना आया हो, कुछ बातें छूट गई हो, तो आप हमसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और ना हो तो आप क्लिनिक भी आ सकते हैं। आप वहां सेंटर जाके भी अगर आपको काउंसलिंग सेशंस की जरूरत है या कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहिए तो आप आराम से वहां बैठकर जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057।
1: और कहाँ पर आना होगा हमारे दोस्तों को?
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला गांव, धर्मशाला, कांगड़ा।
1: जी दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने नोट कर लिया है और ये बहुत ही खास बातों के साथ साथ आप सेशंस भी मैम से ले सकते हैं, तो आप सेंटर भी जा सकते हैं या फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।

0: जी अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जाँच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट का रुख है। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू की चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी चटा
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रही मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

0: 291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।
1: RJ Beats and Ram Bhogpuriya presents

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने तन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला गुरु।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटा
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
5: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
6: मामा, नो शेयरिंग।
5: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
6: कौन था?
5: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
6: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
5: स्मार्ट गर्ल।
6: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
5: याद है ना, नो शेयरिंग।
6: मामा,
7: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
8: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
9: कहाँ रखेंगे टीवी?
10: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

है तो हाँ सारे ना अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शकों तो हाँ सारे ही इसी गूंज करने जरूर जुड़ी जुड़ी होने न कने अगर नहीं जुड़ी होने तो जल्दी जल्दी इस रेडियो गूंज दी धर्मशाला करने जरूर जुड़ा कने जेड़ा फ्रीक्वेंसी है सभी जरूर तो हाँ तक पहुँचानी है कने तो हाँ भी इस फ्रीक्वेंसी जो जरूर ट्यून जेड़ा है से करी लिया फ्रीक्वेंसी है 91.2 MHz पर कने जेड़ा इस वक्त कार्यक्रम अहाँ तो हाँ तक ले करी आए हो ना तो इसका ना भी जरूर तो हाँ तक पहुँचाई दे न वैसे तो तुम रोज ही सुन दे न पर जेड़ा नोए नोए श्रोता जुड़ते न तिना तक भी अहाँ जेड़ा कार्यक्रम का ना वे माटी दी महक तो जरूर इस माटी दी महक च जरूर जेड़ा मिट्टी दी खुशबू है या ये बोली सकते कि यहाँ दी जेड़ा संस्कृति है यहाँ दे जेड़ा रीति रिवाज हैं कुछ ना कुछ यहाँ जो हमेशा एक ही दुए ने जेड़े से जोड़ी कर रखते हैं तो तिना ये कार्यक्रम भी अहाँ जो अहाँ दे जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हैं तिना कने जोड़ी कर रखते हैं कने तिना दा जेड़ा प्यार है से अहाँ जो जरूर जेड़ा है से मिलता है तो इसी प्यार कने अहाँ अपने कार्यक्रम का जेड़ा आगाज है से करने कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने अहाँ करने गलबात जेड़ा है से जरूर करी सकते तो श्रोताओं गलबात करने वास्ते जेड़ा अहाँ दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई दे ना क्योंकि नंबर तुहां तक पहुँचाऊँगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा है से करी सकते नंबर है 701-8117091 ये नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कने शुरुआत अहाँ कर देना अपने कार्यक्रम दी इस प्यारे दे गीत कन्नै

श्रोताओं तुम सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत तो शुरुआत हाँ इस गीत कन्ने कीती है कन्ने तो हाँ सारे भी शुरुआत कन्ने जरूर जुड़ी होने न समय दी ओर अगर हाँ नज़र अपनी जड़े से दौड़ाते न तो समय 2:09 कार्यक्रम चो ही है कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च हाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने हाँ कन्ने गलबात जड़े से जरूर करी सकते कन्ने आजकना जेड़ा दिन है तेरे उपर भी अगर हाँ गलबात करिए तो आजकना जेड़ा दिन है से कहो खास है तो जरूर आजकने दिन की जेड़ा खासियत है से तुह तक पहुँचाते न 19 अगस्त 2026 की अहाँ गल करिए आजकना जेड़ा दिन है क्या हाँ आज खास दिवस बना देन या आजकना जेड़ा दिन है वैसे तो हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा अजकना जेड़ा दिन है से अहाँ बना देन विश्व फोटोग्राफी दिवस तो जरूर तुह सारे जो भी जेड़ा फोटो लेने का शौक है या फोटोग्राफी करने का जरूर शौक होंदा हर कुसी जो शौक होंदा कन्ने अहाँ कुथी भी जानते न तो जरूर अहाँ अच्छी अच्छी जेड़ा फोटो है से खिंचते न कन्ने ठीक है जेड़ा यादा दे तौर पर अहाँ गल करिए जेड़ा फोटो न से अहाँ जो कुथी ना कुथी चाहे से अपने कन्ने अहाँ कोई भी लम्हा जेड़ा से बीता है से अहाँ जो याद दिलाइंद है या कोई भी अहाँ दी पुरानी जेड़ा याद है से जरूर ताज़ा जेड़ा से हो जाती है कन्ने अहाँ बार बार उसी फोटो जो जेड़ा से दिखना शुरू हो जाते हैं या क्योंकि जिंदगी है ना जिंदगी का जेड़ा सफ़र है से कलू दिया थमी आना है से तुह जो भी पता नहीं है कन्ने हर दिन जो अगर अहाँ खास बनाते न खास तरीके ने बनाते न कन्ने हर दिन जो इंजॉय करते न आजकना जेड़ा दिन है अगर अहाँ पहाड़ा दी खूबसूरती दी गल करिए या जेड़ा अहाँ दे नदी नाले न तिना दी गल करिए तो हर चीज़ अहाँ जो अपने ओर जेड़ा से आकर्षित कर दी है तो इसी कन्ने तुहां हाँ जो फेसबुक लाइव भी दिखा दे न तो तुहां सारे जो ही जितने भी लिसनर हैं तिना जो शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है इसी नमस्ते कन्ने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अपनी जेड़ा पसंद दा गीत है पहाड़ी गीत है से सुनी सकते तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाइंदे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज जेड़ा से जरूर करी सकदे नंबर है 701-811-7091 तो ये नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कन्ने बाकी जेड़ा काम है से तुहां दा है कन्ने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर चाहां कन्ने जुड़ी सकदे तो जरूर इस सफर जो अगे बढ़ाते न कन्ने तुहां जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर अगली फरमाइश अगर अहाँ मोबाइल फोन की ओर नज़र दौड़ाते न तो ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो टैक्स मैसेज के थ्रू कन्ने तिना दा नाम है अंजलि जी कन्ने से रहने वाले न योलते रहने वाले न तो जरूर अहाँ अंजलि जी तक ये गीत फरमाइश पहुँचा देना कने बाकी जितने भी श्रोता न सभी जरूर इस प्यारी दिया फरमाइश जो इंजॉय करा कने इस कार्यक्रम च जल्दी जल्दी जुड़ा इंतजार मत करा क्योंकि इंतजार दी जेड़ा घड़ी है ना से हर कुसी वास्ते लंबी होंगी मेरे वास्ते भी लंबी तुहां वास्ते भी लंबी क्योंकि तुहां भी इंतजार जेड़ा ऐसे करते रहते हैं कि कालू दिया तो बजते न कने कालू दिया तो हाँ इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ते न तो बिल्कुल सफर जेड़ा ऐसे हुण अहां अग्गे बढ़ाना है कने ये गीत जेड़ा ऐसे तुहां तक

0: श्रोताओं तो सारे सुनिया ये गीत फरमाइश फिर ते अहां वापिस अपनी गलबात उपर पुजी हो न कने अज अहां जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा दे न से करा दे न तुहां सारे ही जेड़े से शुरू च भी मैं तुहां तक पहुँचाया कने तुहां कार्यक्रम शुरू ते सुना देंगे तो तुहां सुनया होना है पर फिर ते एक बार तुहां तक पहुँचाई दे न कि अज अहां खास दिन क्या बना दे न विश्व फोटोग्राफी दिवस जड़े से अज अहां बना देना तो जरूर तुहांजो बचपन की याद या से स्कूल का आखिरी दिन या जन्मदिन दियां कुछ तस्वीरां क्योंकि कुथी ना कुथी जड़ा ये तस्वीर न सियाहां जो चाहे सियाहां दा बचपन है चाहे सियाहां दा स्कूल दा दौर है चाहे से कोई भी अहां दौर बोली सकदे अहां अपनी जिहड़ा बचपने दियां तस्वीरां न तिन्हां जो भी दिखी करी कुथी ना कुथी खुशी जिहड़ा है इस चेहरे पर जरूर आई आंदी है कने ठीक है अगर तुहां जो भी खुशी आंदी है तो जरूर कॉल करा कि क्या जिहड़ा बचपने दी याद है या क्या तुहां जो बचपने च सबसे बेस्ट लगता था या पुंदे चीज़ जिहड़ा है इस तुहां जो खुशी दिंदी है अहां दे जेड़ा पहले श्रोता अहां कन्ने जुड़ चुके हो ना कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: जी ठीक ठाक तुहां
0: जी अहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तुहां कुथू ते बोला दे कने तुहांदा नां के है जी
1: माया बोला भी सगड़े ते
0: जी ता माया जी मेरी गल बात तो हाँ सुना दे
1: और मैं उन लगाए हमें दवाई ये भी मेरी तो ना आई गया
0: जी अच्छा दवाई लोना गए थे
1: जी
0: चलो सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ना जी
1: हाँ फिर तो अबे मैंने ये रखा है जेड़ दिन में सही आता है वो ना बड़ा गया
0: जी जी चलो हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी होता है ना जी अगर हाँ हमेशा अपने मने च नकारात्मक विचार रखते न तो कुथी ना कुथी तेदा भी अहां दी सेहत पर जेड़ा प्रभाव है से जरूर पौंदा है ना जी जी जी कने मौसम कदे है जी सुकड़े दा
1: मौसम हुण तो कनकी है
0: जी हुण साफ हुई है जी जी राती दी बरखा लगी हो ना जी
1: लगी है राती
0: जी प्यागा तक भी बड़ी ज्यादा बरखा हुई ना जी जी चलो नुकसान कुछ भी नहीं होया ना जी ये यहाँ जो शुक्र गुजार करना चाहिए था ना जी जी कने इसी कने कल भूकंप दे झटके भी जेड़ा महसूस है से दो बारी किते थे ना जी जी जी चलो तीदने भी कोई नुकसान नहीं होया सभी
1: नुकसान तो नहीं होया तो ये फिर डर तो लगता है ना
0: जी डर तो डर बड़ी बुरी चीज है ना जी जी जी जी तो माया जी गलबात अहां करा दे ना अजकणा जेड़ा दिन है 19 अगस्त दा दिन है तो आज अहां इस दिन जो बना दे ना विश्व फोटोग्राफी दिवस ना जी जी तो फोटो खिंचना हर कुसी जो पसंद होंदी है ना जी जी जी दिखा जी कई है भी कई नहीं भी है पर हूँ सोशल मीडिया का जमाना है तो हाँ हर जगह मतलब फोटो एरते न या हाँ अपनी जेड़ा फोटो दी गैलरी है उस जो सेव कर लेंदे न जी पर जी पुराने समय दी या गल करिए तो उस टाइम जेड़े से कट मतलब बड़े हाँ। का जी जी जी पर कुथी ना कुथी ये फोटो भी अहां दे बचपन दियां यादां या अहां दा परिवार दे जेड़ा सफर है परिवार कने सफर जेड़ा अहां दा चलिया है से जरूर अहां जो याद दिलांदा है ना जी जी जी तां बिना फोटो जो भी दिखी करी कई बार अहां दे चेहरे पर स्माइल भी आई आंदी है आंसू भी आई आंदे न जी जी जी जी सही बोला दी ना कि चलो याद हर इंसान दी होंदी है ना जी पर प्रकृति दा रूल ये है कि आना जाना जेड़ा है से जिंदगी च है ना जी प्रकृति दा रूल ये है ना जी जी उस जो तहां कदी बदली नहीं सकते ना जी जी जी पर अहां हमेशा यही बोली सकदे कि आजकना जेड़ा दिन है उस जो फुल ऑन एंजॉय करा, अपनी फैमिली कने एंजॉय करा या अपने जेड़ा दोस्त हैं या जेड़ा भी तुहें लगदा है कि जित्थो तुहें जो खुशी मिलना दी जरूर इस दिन जेड़ा है सहां वास्ते पहला दिन समझी कर चलना। जी जी जी तो माया जी आज तुहां कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करगी जी। जी कुंदिया दादी माता दा भजन सुनना है। जी जी जरूर एक गीत ए भजन तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। तो जी तुहां दा भी जी जुड़ने वास्ते दर्शकों तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी गूंज कन्ने या इसी गलबात कन्ने अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कन्ने तुहां जो लेकर चलते हैं फरमाइश दी ओर।

0: आहोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तशो तो तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां करने जुड़ सकते कने हां करने गल बात जिड़े से जरूर कर सकते। तुहां सारे सुनिया ये प्यारा दया भजन प्यारी देई फरमाइश माया जी दी फरमाइश गी तहां तिना तक पहुँचाया कने तुहां सारिया भी इंजॉय किया। गल बात अहां करा देन विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे च। सोचा अगर एक तस्वीर जड़ा से अहां जो बड़ा कुछ दे करी जानती है या जड़ा विश्व फोटोग्राफी दिवस अहां आज बना देन या जड़ा फोटोग्राफी जड़ा फोटोग्राफ लेंदे न या तस्वीर जड़ा न से लेंदे न या एक तस्वीर लेने वास्ते अहां हमेशा कोशिश जड़ा से करते न कि अच्छी जड़ा तस्वीर है से जरूर होवे। कने अहां कई बार यही तस्वीर जड़ा न से अहां जो छोटी छोटी जड़ा खुशियां न से जरूर देख री जानियां न। कने हर कुसी दा अपना अपना शौक है ना, तो इसी शौक कन्ने अहां फिर ते कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने अगले जड़ा श्रोता न तिना कन्ने गल बात करते न। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न? जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुत्थों दे रहने आए न कने तुहांदा नां की है जी? आज क्या करा दे तुहां, क्या काम कार छेड़े आज?
1: काम कार तो रोज बकरियां कने डंगरे चारने का।
0: जी चलो ये भी एक ड्यूटी है ना जी।
1: जी
0: थोड़ा दिया मन भी अच्छा तो हाँ ठीक है। तो हाँ इस टाइम जड़े से बकरियां पालियां और क्या पाले है जी? तो हाँ
1: गाय रखी हैं दो।
0: जी गाय भी रखी हैं दो।
1: हाँ जी
0: जी तो तीने चारना तो हाँ जान देना जी।
1: हाँ जी थोड़ी देर बने चलने लाए बंदे
0: बने जड़े से तो हाँ जान दे पर ती थोड़ा माहौल के दिया है थोड़ा दिया ती दे ऊपर गल बात करिए आज ता श्रोता तक भी पहुंचा दे ना की
1: दिखा।
0: जी
1: हाँ जी माहौल तो ऐसा है ना
0: जी
1: कि जंगले का थोड़ा माहौल तो खराब है।
0: जी खराब है।
1: हाँ जी क्योंकि जड़ा नशाखोरी है ना।
0: जी जी
1: आजकल क्या की आवा दे नौ मुंडो कुड़ियां जड़ा ऐसा है ज्यादा वो
0: जी जी
1: क्योंकि उनसे पता नहीं कौन कौन नशा कर दे ना कौन नहीं कर दे ना।
0: जी
1: जी हाँ छोटे छोटे बच्चे ने 18-20 साल दे बच्चे ने तीन दाई अगर घर देखा पढ़ना भेजे ना स्कूल जंगल
0: नजर रखा क्योंकि नजर रखना तो जरूरी है ना जी। फर्ज अपना निभाना जरूरी है। कने थोड़ा दिया हाँ बच्चें जो भी यही बोलना चाहते कि थोड़ा दिया तुहां अपनी पेरेंट्स दी साइड जरूर दिखा कि यहाँ दे पेरेंट्स किस हाल च यहाँ जो स्कूल भेजा देन या कॉलेज भेजा देन या कुछ भी करा देन तो जरूर थोड़ा दिया पेरेंट्स। जी
1: हाँ जी ये तो डेली का रोज का काम है।
0: जी जी चलो जी जी जितने भी श्रोता सुना देंगे तो जरूर तिना तक कहां ही बोली सकदे कि ए जेड़ा
1: अपने बच्चे कंट्रोल।
0: जी जी जी जी ता आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
1: आज तो गाना तो अड़िया पसंद है सुनना है।
0: जी अच्छा मेरी पसंद है।
1: हां जी हां ता रोज दस दे जी वो गीत गाना सुनाई दे वो सुनाई दे।
0: जी जी
1: जी
0: तो वैसे मेरी पसंद तो हां जो उंदी जी जी जरूर जी, मेरी पसंदीदा गीत तुहां तक पहुंचान दें जी, जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੜਾ
0: ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਸੇ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਆ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਂ बार बार अहाँ पहुँचा देन कि गलबात अहाँ ये करा देन, गलबात अहाँ आज कार्यक्रम च लगाई हो है विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे च गल करा देन, कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर देन गलबात। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो अपना परिचय जरूर दे दिया जी तुहां भी।
1: मैं चमंडा ते सुभाष बोला दा जी।
0: जी चमंडा ते सुभाष जी बोला दे।
1: जी
0: जी, ता सुभाष जी गाल बात आहां दी आज चली हो है विश्व फोटोग्राफी दिवस दे बारे च, तुहां दा भी शौक था फोटो खिंचने दा की नहीं?
1: फोटो हाँ तो पहले खिंची छड़े पहले
0: जी पहले खिंची छड़े जी। चलो क्योंकि बचपन दी याद यहाँ बोली सकते, क्योंकि हर कुसी दा अपना अपना शौक होंदा ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, बचपन से सब बड़े शौक होंदे ना
0: जी, बड़े शौक होंदे। कईयां जो नेचर कन्ने प्यार होंदा ना जी, अगर हाँ पहाड़ां दी ओर दिखदे न, अगर इस टाइम ही तुहां पहाड़ां दी ओर दिखा दे होणे न, तां जरूर पहाड़ां दा जिहड़ा नज़ारा है से बड़ा प्यारा लगा दा ना जी।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी, क्योंकि एकदम बरखा हुई तां हुण मौसम जिहड़ा है से साफ हुई है, तां कुछ अलग ही नज़ारा
1: साफ हो गया है इस टाइम में, तारा पर तो बड़ा बढ़िया नजारा है
0: जी जी जी। तो सुभाष जी और नोहिता जी चमंडा दी
1: बस ठीक ठाक है जी, चलिया माता दा प्रोग्राम
0: जी। अच्छा, जेड़ा नवरात्रे ना सलग गयो ता रौनका जेड़ा ना से चली है ना जी।
1: हां जी, हां जी
0: जी। ता आज तो हां कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके?
1: मैं गाना सुनना मिन्ना चौधरी का
0: जी।
1: अच्छा, ये सब मैं दिए पीले पत्ते पत्ते पानी में ऊंचा पानी मैं दूंगी
0: जी। जरूर जेड़ा मेहंदी आला गीत है तो सुनना है ना जी।
1: हां जी, हां जी
0: जी, जरूर जी। ये गीत तो तक पहुंचा दें जी, जुने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: धन्यवाद जी तुहाडा
0: जी। तो श्रोताओं तो हाँ सारी फेसबुक लाइव भी अहाँ जो दिखा देन, कने इंदु जी भी जिहड़ा कमेंट है से जरूर करा देन, तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहाँ कने जुड़ी सकते, कने अहाँ कने गलबात जिहड़ा से करी सकते। तो श्रोताओं उम्र जिहड़ा से अली बिल्कुल छोटी है, पर जिहड़ा बोलिया मेरी आवाज़ है से जादू, अपनी आवाज़ का जादू करने जिहड़े से सारे का ही विश्वास जिहड़े से जीती लैंदी है। तो इंदु जी तुहांदा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, तुहां इतना ज़्यादा प्यार दिंदे न कने रेडियो सुनदे न उसी वास्ते। तो तुहां सारे भी इस कार्यक्रम के सफर चाहां कने जुड़ सकते, कने अहां कने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते, इसी गलबात जो अहां अगे बढ़ांदे न, कने तुहां जो लेकर चलते न अगली फरमाइश दी ओर।

दर्शकों इंदुजी तक आई फरमाइश गीत पहुँचाया कने तुहां सारियां भी इंजॉय कीता जिंदगी सोनी है। दर्शकों जिंदगी जिहड़ा इसते बिल्कुल सोनी है, पर अहां किस तरीके ने अपनी जिंदगी दे सफर जो सोना बनांदे न स्याहां पर निर्भर करदा है। इसी कन्ने अहां फिरी ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाना है, क्योंकि जिहड़ा बाकी श्रोता न सभी इंतजार करा दे न, ते इंतजार जरूर थोड़ा जिहा तुहां जो करना पौंदा है, कन्नै करना भी जरूरी है, क्योंकि इंतजार दी जिहड़ा घड़ी है ना से हर कुसी वास्ते लंबी होंदी। तां हुण जिहड़ा इंतजार दी घड़ी है से तुहां वास्ते छोटी करा देन, कन्नै एह गीत तुहां तक पहुँचा देन।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी गूंज कने हाँ फिरी ते अपने कार्यक्रम च वापिस जेड़ा से आई हो कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़े होने न कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहां तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक समय जेड़ा से अपनी रफ्तार लेकर चलिया कने हाँ भी समय दी जेड़ा रफ्तार कने चलना है अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा दे।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम का जेड़ा समय है या जेड़ा सफर था से इतु ही संपन्न होंदा है क्योंकि हूँ हाँ जो जेड़ा कार्यक्रम का जेड़ा समय है से जरूर इशारा करा दा कि हूँ तो हाँ अनुमति जेड़ा है से जरूर ले लिया अनुमति भी लेंदे न कने तो हाँ अपना जेड़ा ख्याल है से हमेशा रखा क्योंकि ख्याल रखगे ताई तो तुम अपने काम जेड़ा न से करी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा
2: चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटा
4: छताई। ओहो।

0: बेटा खाया नहीं, खाई।
1: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मांग गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल

0: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
1: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
2: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
3: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
2: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं दे।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
10: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
13: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
14: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
13: क्यों?
14: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
15: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
16: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
19: मैं तो बुरी।

0: नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 मेगा हर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझगो इंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन हाँ सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। कैसे इन श्रोताओं तो है सब उम्मीद करनो तो सब खरे भूने खुश भूने और अपने घर तंदुरुस्त भूने हिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। शो तो अक्सर बोलना हो कि खुश रहना और तंदुरुस्त रहना क्या सो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी मंच है ना। तो ते सब श्रोता सो कि जुड़ी सकते हैं जनाब, कॉल कर सकते हैं 7018 8179 पर नंबर आक मौके फिर हम रिपीट करनो हाँ 7018 8179 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो बाखूबी हो नहीं सकते हैं। यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो रेडियो मंच सांचा करने लायक जरूर भुआ, रेडियो मंच दसने लायक किया सो जरूर भुआ श्रोताओं। तो ये हिंद आई थिंक पहले श्रोतागण के अनुसार सो कि बिल्कुल कनेक्टेड हिंद। थोड़ी घर मौसम की जानकारी दिच्छू श्रोताओं, तो इस समय की 19 डिग्री सेल्सियस रे आसपास मौसम बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और 90 लेकर 95% रे आसपास किया सो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी किया सो बन रहा। तो यह श्रोताओं कार्यक्रम मंच है तुसो दसो मौसम रे जानकारी तू तक साझा करे हा। बहरहाल इन अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड हैं, अगले ने माफ करा पहले श्रोता सूगे कनेक्टेड इन कुण वलुंदे और कड़ी थों वलुंदे ये पूछ लेंदे और तो बाद अन्य बहुत सारी जानकारी इन जो असु तुस होगे दसनी। नमस्ते जी।
1: जी नमस्कार जी, सुभाष वल्लू करता हूं खड़ोते हूं।
0: नमस्कार जी सुभाष जी, खड़ोते थों वलुंदे बड़ी अच्छी वैली है, खड़ोता वैली बड़ी अच्छी जगह, पहाड़ है बीच बसुरा इंदा है खड़ोता ग्रां अपने आप में बड़ा खूबसूरत है बड़ा प्यारा है ना जी। सामने सामने क्या ना सो पहाड़ उस दिन।
1: हाँ जी हाँ जी, बड़ा बढ़िया वे पहली यार सरोटी माता मंदिर चली गया ना तेरे तो बड़ा बढ़िया वे व्यू पहाड़ रहा।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सरोटी वाली माता रे मंदिर के नारे है ना जी।
1: हाँ सर चढ़ी तो बड़ा बड़ी टूरिस्ट वगैरह इंदर ना चढ़े
0: कुछ सियाने के हलोटी वाली माता चलिए जी। सुभाष जी क्या कर दें तो है?
1: हाँ जी अपना ये ठीक है, एक नाम तो है थोड़ी मतलब जी
0: आई
1: कोई फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, अपने कमरी इंदे इंदे श्रोता सूगी जुड़े थी जो कि आई थिंक डाडा साइड थों थी है, डाडा थों बनो मला साइड थों थी है शायद सुदस जुड़े थे कि अपने कमरी कोई रीस नहीं है। सब टाइम टू टाइम की ऐसा चलता सर्कल ना जी।
1: जी एक गोजरी की चल रहा उठ पल्ला कुंजड़ी है शायद चली ना कुछ देखा कंप्यूटर में जे।
0: अच्छा फिलहाल हाँ यूट्यूब में कि नहीं है कि सेरा गुर है
1: ए जी गोजरी गीत है पता नहीं गायकार का नाम है गाने बोला उठ पल्ला कुंजड़ी है
0: उठ पल्ला
1: कुंजड़ी है
0: कुंजड़ी है।
1: हाँ जी हाँ जी गोजरी गीत है ये।
0: अच्छा
1: बड़ा मशहूर है जी गाना चल रहा है।
0: अच्छा क्या बात है
1: जी जी
0: चलिए ठीक है जी। है बिल्कुल हुनंदन तो सुए गीत उड़पाला
1: कुंजड़ी
0: कुंजड़ी चले आ जी बिल्कुल चले आ गोजरी पहाड़ी गीत है।
1: हां गोजरी पहाड़ी गीत
0: है। हां अबे निकलो ठीक बोलूं देन तो ठीक है जनाब जरूर होने ले तुसु हो तुंदी प्यारी दी वादी मंज कजो के बड़ी प्यारी वादी खड़ोता।
1: लाना तो सुकस की दिन चक्कर
0: बड़ा मन बलदा लेकिन फिलहाल बरसाला चल
1: रहा है कोई ना मतलब कोई ना गुंजर में दूसरी गल कर ले ला फिर दूसरे दिन चलिए।
0: चलिए फिलहाल बरसाला मुकने इंदन ते इंदन 10-15 दिन
1: कोई मत कोड़ा बरसाला मुकने ते कई रेडी जो कचा कगड़ी बिन दिन ने
0: हां जी हां जी थोड़ी करी पक्की रेती ना इंदन
1: हां हां जी जी फिर कोई ना तू सोगी मेरे कांटेक्ट हो जेला फिर सोगी चल पहले
0: जी जी जरूर जरूर
1: ठीक है जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद जी
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के सो चल रही हैं श्रोतों तो चली जाइए बहुत सारे श्रोता के सो अक्सर कनेक्ट होते हैं कार्यक्रम रे थ्रू और जानकारी रहा सिलसिला तो जरूर चलना श्रोतों बहुत सारी जानकारी ही ना सुले जो प्यूरी ना लेकिन आइया इन जो फरमाइश करी है यारी फरमाइश हथों किया सो अज है आगाज कर लेन कार्यक्रम रहा हिंदी अपनी गप्पा रहा और फिर इतों बाद अन्य जानकारी जरूर साझा कर ले तू होगी शो तो आइए हूँ देने यानी फरमाइश में एक गीत

শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হিসাবে টিউন কর রো আর ইনতি আপনি গপ্পা জি বিলকুল লাইভ চল রহি নে হুন কর দেন না কুছ কেচারি বাজার আলে কুছ কোতওয়ালি বাজার আলে কুছ ইন দেখনে আরে বাজার আলে কুছ ফতেপুর আলে কুছ সিদ্ধপুর আলে সিদ্ধবাড়ি আলে বহুত সারে ইনদে শ্রোতা গেন সো কার্যক্রম হুন দেন আর খাস কর জো ইনদে শ্রোতা হ্যাঁ জো इस समय अपनी अपनी कार में अपनी अपनी निजी वाहन में हूँ गर्दन सो भी है ना कई जगह भरमौर पास है कि सो बस सब अंदर भी कि सो कार्यक्रम चल रहा बंदा है ना तो चलिए जी ये तो अपना गादा कार्यक्रम में चूर थों पांच वजाना इंदा जी और इंदी अपनी गप्पा गादे इस कार्यक्रम रहा ना हा वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट भुंदा है और ये नाचीज सचिन कपूर इस कार्यक्रम जो ब्रॉडकास्ट करता है शो तुम बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हिन और अबर खतों श्रोतों है सब जान देन की काफ़ी ज़्यादा किया सो लैंडस्लाइड बुचू कर दी काफ़ी घरा मन चुकी है सो खतरा किया सो पैदा बुचू करता है श्रोतों है ना जाए सो गल धर्मशाला रे करा जाए पालमपुर रे करा जाए बैजनाथ रे करा श्रोतों तब तबाही रा मंजर ता हा या कुरले की सो काफ़ी रो भी कर दिया है ना जी तो चलिए फिलहाल कुछ और अन्य जानकारी के अनुसार तो सुत अग्रह है आप पहुँचंदे हैं छो तो धर्मशाला तो भाजपा विधायक सुधीर शर्मा रे समर्थन में खोली करे सामने आए पार्टी रे कार्यकर्ता

पर भी किया, सो पुलिस प्रशासन है कानूनी सिकंजा के आसोका सी दिता है शो तो। पार्किंग रे निकटता था हनुमान मंदिर रे समीप जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी करने वाले अक दर्जन तो अधिक भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ किया, सो पुलिस है मामला दर्ज करी दिता है शो तो। ऐसा कार्रवाई रे बाद क्षेत्र राजनीतिक माहौल पूरी तरीके हो गए गरमाए गो है शो तो। और भाजपा नेता है कि ऐसो इसे इस सत्तारा दबाव की असो दसो सत्तारा दबाव में की गई है कार्रवाई रकरार की असो दिता है शो तो। जानकारी रे अनुसार अगर हम गल करूँ शो तो धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा रे समर्थन व धर्मशाला मंडल व जिला भाजपा रे कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे शो तो। विजिलेंस जाँच और दर्ज मामले जो राजनीतिक तो प्रेरित दसुहा और विजिलेंस कार्यालय और हनुमान मंदिर रे तड़ी गिची करी की ऐसो जम्मी करी की ऐसो तो सो नारेबाजी करी थी शो तो है ना जी। विरोध प्रदर्शन करो तो है ना पुलिस रा ये बलना है शो तो कि बिना अनुमति सार्वजनिक स्थान पर मार्ग अवरुद्ध करने और कानूनी व्यवस्था जो प्रभावित करने वे चल रहे कदम चुकू थो। जठेरे तहत श्रोतों प्रदर्शन में शामिल करी बाक दर्जन थो अधिक कार्यकर्ता जो किया सो तिन्या पर FIR किया सो दर्ज भुज गई है श्रोतों। कार्यक्रम मंच ये चलते रहना है श्रोतों। जानकारी रा पिटारा की सो ये खोलते रहना है तो सब बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो की कॉल कर सकते हैं ना 7081889 पर नंबर अक मुके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7081889 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो नहीं सकते हैं श्रोतों। तो चलिए चल दे ना गूँ और कार्यक्रम मंच तुझे सभी जो हूँ देन प्यारे दया गीत

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर और एक कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही हैं तुंदे वीडियो सेट में अपना पसंदीदा गीत जरूर होने सकते हैं श्रोतों और लगता कि अपने कोई जानकारी आ जो अपने क्षेत्र रे जानकारी आ जो वीडियो में दसने लायक आ मनु तक पहुँचाने लायक आ तथा वास्ते भी तो है कॉल जरूर कर सकते हैं 7081 8 8 7 0 9 पर नंबर एक मौके फिर रिपीट करनो सांझा करनो तुस वो गी दस नो हाँ 7 0 8 8 8 7 0 9 अक पर तो है सब श्रोता कॉल जरूर कर सकते हैं बहरहाल श्रोतों इसी सोगी थोड़ा घर और हगों किया है जरूर चलते हैं और तू सभी बिल्कुल दसना चाहते हैं श्रोतों अगली जानकारी तू हो गया है जरूर साझा करना चाहते हैं जिंद गिंद कोई श्रोता असू गिना जुड़द तो असू तो जानकारी साझा करना पैनी है जनाब चलिए तो दसी थी कि हिमाचल में गए असू कितना नुकसान बच्चू करता हा ये बरसाले वे चलते श्रोतों जी बिल्कुल तू सब भी श्रोता जो दसना चाहता कि जो बरसाला चल रहा हालांकि कुरले की असो बैख रहे लेकिन कितना करें नुकसान की असो इस समय बच्चू करता हा ये तुसो गया हूँ जरूर साझा करना चाहता जरूर दसना चाहता हा श्रोतों जानकारी हिमाचल में मानसून में के असो कम से कम बेता 1881 करोड़ रुपये रखे असो नुकसान हुआ और लगभग 197 मौत के श्रोतों असो हुई हिन बिल्कुल प्रदेश में मानसून रे दौरान श्रोतों हुई बरखा और भूस्खलन रे चलते हले तक 197 मनु रे के असो मृत्यु भू चुकी है 197 मनु के असो अपनी जान गवाई बैगे श्रोतों जमीन धसने और बदल फटने री घटना थो किया काफ़ी नुकसान हुआ है प्रदेश में श्रोतों और सोगे सोगे वाजे आपातकालीन परिचालन केंद्र री ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अं गल करूँ तो मानसून सीजन में हले तक 197 मनु रेखे असो मौत हुए श्रोतों जबकि 2313 मनु घायल हैं प्राकृतिक आपदा थो प्रदेश जो कि असो काफ़ी लख व नुकसान यानी कि 1,88,171 लाख रुपये व करीबन नुकसान हुआ है श्रोतों और माफ़ करा आंकड़ा थोड़ा गलत बुझेगा करोड़ों का नुकसान है जनाब एडी 1,881.72 करोड़ रुपये रखा सो नुकसान हुआ है श्रोतों ते हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ भूस्खलन भी वजह थों हुआ है बदल फटने की वजह थों हुआ है श्रोतों है ना और तो तुसो ये भी दसना चाहता कि प्रदेश में इस समय की असो लगभग 88 मुख्य सड़का के ना सो पूरी तरीके की बंद प्यूरी हिन श्रोतों यातायात पूरी तरीके की किया सो बंद है श्रोतों बहरहाल इन श्रोता का ना सो कि कनेक्टेड हिन पुस दिन कौन वालों दिन और कड़ी थम वालों दिन नमस्ते जी हाँ जी नमस्ते जी खरेन जी तो बोले तो ठीक ने चिकन बल्लू देन और कड़ी थों बल्लू देन
1: आउन जतिन बल्लू कर दे आते मेरे घर भागी
0: अच्छा जी जतिन जी कौन देने गीत थोड़ा पसंद कर ले गोजरी बड़ी बड़ी गोजरी पुछू रही है सुले जी कौन देने गोजरी होने तुसु
1: निशांत बादवा
0: अच्छा
1: निकी जी ने गोजरी
0: जरूर होने ले स्कूल को छू रही थी आज
1: हाँ जी
0: अच्छा चलिए ठीक है जी इजाजत दे जरूर तुम दे फरमाइश पूरे बोले इसी सो की श्रोतों इनके अगले श्रोता भी अस होगी कनेक्टेड हिन तो सब बन रहे ने समय सचिन कपूर सोगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला हुनु कर देन नमस्ते जी
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी
2: नमस्कार जी
0: नमस्ते जी नमस्ते ना जी ना बछैन माफ कर कौन बोलन देन और कड़ी थो बोलन देन
2: पंकज
0: अच्छा पंकज नहरी सिद्ध बाड़ी थो अच्छा पंकज जी ठीक ठाक ने तो है
2: हाँ जी
0: और करे लगुरन अच्छा बरमोर को छुरे थी है
2: सभी
0: दिन लाई कर आए तो है बरमोर मा अच्छा क्या बात है था करे करे घूमे जी कस कस मंदिर रे दर्शन करे मणि महेश
2: केनंग बिधि मन केनंग मलाई रे दर्शन कर आए जी
0: अच्छा अच्छा क्या बात है ठीक है पंकज जी कुंदन गीत हुनना पसंद कर रहे पत्थर बठोरिया शिकारिया अच्छा ऐसा लीजो ठीक है पंकज जी यह समझ गया थोड़ा करे दिमाग का जोर बहुत तो समझ गया जरूर तुम्हारी फरमाइश पूरी कर लिया है ठीक है जी पंकज नहरिया साहब थैंक यू सो मच नमस्ते
2: थैंक यू नमस्ते
0: जी श्रोतों तो ऐसा बन रहे समय आरजे सचिन कपूर सो गया और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ करते हैं अपना एक गादा कार्यक्रम तो है रेडियो मंच हूँ करते हैं इन श्रोतों और चलिए जी कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और परमेश्वर दौर गया सो पूरा करते हैं श्रोतों बने रहे जुड़े रहे रेडियो गुंजन रेसा गूंज सो गए

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेरी गुंजना तो है ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर रहा श्रोता इस समय तो सब श्रोता जरूर अस होगी कनेक्ट हो सकते हैं इन दे श्रोता कॉल भी करू कर देती है बड़ी देर रह तक कनेक्ट कर लेंदे श्रोता इन पूछ दिन कौन बलूंदे और कड़ी थो बलूंदे कजो कि श्रोताओं कार्यक्रम किया जानकारी तो कार्यक्रम में चलती रहती लेकिन कार्यक्रम सोगे सोगे इन जो श्रोतागण त्यारा मिलाप भी किया सो जरूरी है शो तो है ना रिश्ता मजबूत बुंदा है और रिश्ता बेहतरीन बुंदा है। नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी
0: जी रेडियो सेटरी आवाज अस्त कर दिए जी। नमस्ते नमस्ते कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन जी
1: पहलनी हो बोलो पहलनी हो।
0: अच्छा पलिनियों बलुंदन पलिनी थों कहना जी तुंदा
1: रचना
0: रचना की रचना
1: रचना रचना।
0: अच्छा वचना जी नमस्ते ठीक ने तो है।
1: हाँ जी तू से ठीक है ना।
0: हाँ जी वचना जी तुंदा आशीर्वाद आ प्यार आ वो बिल्कुल ठीक है जी। ता पलिनी पलिनी ग्रांडर क्या नौवा ताजा चल रहा है इस वक्त
1: कोई नौवा ताजा ना जी बरखा लग रही नौना बड़ी लड़ी।
0: अच्छा बरखा तो बिल्कुल लग रही है
1: वो लग रही है ना।
0: हाँ जी हाँ जी कुरली बैग हो रही है ना जी।
1: हाँ जी
0: आज आई थिंक त्रिया दिन ना शायद कुरली बैग दे है ना जी।
1: हाँ जी
0: हाँ जी तो कुंडली गीत होना पसंद कर ले पहले तो ये दस ही दे जी
1: ए मेरी पोत्री ये नंबर मिला रही है ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: बड़े दिन अरे बल्दी हूँ जब सचना होगी गल करनी है जो बड़े बढ़िया लगती तुम्हारी गप्पा।
0: थैंक यू जी ये तुंदा प्यार है तुंदा आशीर्वाद है।
1: हां बड़े ख्याल बोल देना तू से मां बबल सेवा करा जिया एरा।
0: जी जी जी बिल्कुल एर न छिंदे रे मां बब तिया ता असु दुनिया दस दस रे ना तिया ता असु दुनियादारी सिखोरे तिया ता असु चलना फिरना सिखोरा उठना बैठना सिखोरा असु जने कड़ाना ना इंदा तो इंदी सो भाषा समझ देती है कि अबे इंदे पुत्र हो गिंदी दी वो भूख लगे आ कि अबे अबे अबे नहाए पाणे ना अबे धोए पाणे है ना जी। सो तो भगवान भगवान रा रूप ने जी माबड़े ता भगवान रा रूप और खासकर माँ जो हमेशा प्रेफर करनो और बलनो है क्योंकि सब रिश्ते थो ज़्यादा ना मोर रिश्ता सब भी पहले और मोटा बंदा को जो किता है 9 महीने पहले असु थो प्यार करना कि असु असु दसुरा बंदा है ना जी। सब रिश्ते थो पहले माँ के सो 9 महीने पहले अपने बच्चे जो प्यार करना लगे पेंदे आ जी ता ये तो भगवान ने अच्छा जी तो कदे लगुंदा जी गल करी करी
1: बड़ी लो करदा।
0: अच्छा अच्छा कितने साल थो हुनु कर देन जी कार्यक्रम में या कितने महीने थो हुनु कर देन ए
1: कोई 2 साल हो।
0: अच्छा
1: रेडी आनी पर अपने
0: हां जी
1: तो 4 बजे तक जरूर होना।
0: अच्छा 2 साल थो तो है ट्राई ना करी कदी भी जी गल करने री ता 2 साल बाद आज लगो नंबर
1: ना नंबर तुम दा ये तो मेरी पोतरी है ये तो ही से हूँ बल्दी ने मेरे आगे नंबर मलाई दिंगे आके देना।
0: अच्छा
1: ते मालूम हूँ निकाल।
0: अच्छा तुम दी आवाज थोड़ी थोड़ी खटी कर दे शायद पलेनी पास से सिग्नल ना मुड़ो तो बड़ी उच्ची ठा रही है। हाँ जी चलिए जी असु भी अच्छा लगो तुसो की गलबात करी करी जी और ये नंबर है इस नंबर मन तो चूर थो पंच कदी भी फोन करी लिया मुँह चुकी लेना तुंदा नंबर ना जी। बिजी बिजी इला तो तुहे कर दे रहे चुकी ना चुकी ना बिच अंदर आक मौके था। चलिए जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले
1: गीत बस
0: जिकले दे सर जिकले दे सर जी।
1: हाँ जी
0: अच्छा ठीक है जी जरूर होना लेते सुएगी ना जी।
1: ठीक है जी
0: ठीक है जी नमस्ते जी नमस्ते
1: जी धन्यवाद
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही बहरहाल इंदे अगले श्रोता सूगे फिर कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
2: हेलो नमस्ते भाई जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल न जी?
2: ठीक।
0: अच्छा जी, कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे
2: हैं? साक्षी बोल कर दी खना रहे हूँ।
0: साक्षी जी खना रहे हो बोल रहे हैं? किना खना रहे रहा मौसम इस समय साक्षी जी?
2: ठीक है, बढ़िया, मौसम साफ है।
0: मौसम साफ है, बढ़िया है ना जी, धूप लग रही है। अच्छा साक्षी जी, कुंडली की थोड़ा पहले तो ये दस दिया।
2: बन्नी माता।
0: बन्नी माता का भजन होना है ना जी?
2: जी।
0: अच्छा आज क्या क्या कमाओ पूरा दिन साक्षी? तो है
2: घरे का काम कितना।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, नमस्ते जरूर होना ले तुसु।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। श्रोतम एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूर है तुसो गीत अपना आर छे। तो बहुत अच्छा लगता है श्रोतम हिंदे श्रोतागण के सो असु हो गए हेरे लिए पिछले 2 साल तो कि ऐसो रेडियो होनो कर देन और खासकर अप्पू बल्लू इन कि चूर वजह के ऐसो कार्यक्रम है ट्यून करी देन और 5 बजे तक अपने गाते कार्यक्रम हो गए कि ऐसो बने रहें। ये कार्यक्रम के ऐसो वाकई माई फील दुआंदा एक महक दुआंदा हा ये इंदे गदयाली कल्चर जो पुनः धन्यवाद करनो अपने डायरेक्टर गुरु जी रा संदीप परमार सर रा कि तो है प्लेटफॉर्म के ऐसो रख रहा और ये स्लॉट के असो दित रहा हर युवा वास्ते हूँ तक सर बलनों जो भी युवा जिन्या टैलेंट अपना सोईड़ी दस से सकते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म के असो असो सभी वास्ते दित रहा ना केवल ये कि सिर्फ सचिन कपूर वास्ते ये प्लेटफॉर्म है तुसु सभी वास्ते भी ऐसो तो चूरथों पांचे कार्यक्रम होस्ट बंदा और मुझे बड़ी खुशी होने कि अगर तू है इच करी होस्ट करना मतलब तू है इच करी बैठना और अपना एक्सपीरियंस साझा करना है ना जी। बहरहाल इंदे अगले श्रोता भी के न सो कनेक्टेड है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार।
2: राधे राधे।
0: राधे राधे जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
2: और भाई ठीक ने?
0: बहुत बढ़िया जी। तो है भले तो है ठीक ठाक ने?
2: अरे भाई बढ़िया।
0: कौन बोल रहे और कड़ी थम बोल रहे
2: अंजना भाई नोर लिंक पाऊं।
0: अच्छा अच्छा जी अंजना जी पहले तो फरमाइश दस ही दे अपने क्या फरमाइश है तुम्हें?
2: फरमाइश भाई तुम दे पर है
0: ठीक है जी जरूर होना लेगी इतना जी।
2: ओ ठीक ठाक।
0: हाँ जी बढ़िया जी ठीक ठाक है जी खरा हूँ। बस पिट्टी बस पिट्टी पीड़ लग रही है कुछ तो बाकी ठीक
2: है। मौसम चेंज हो चुका है लग रहा बुखार सर्दी जंग वाई पीड़ा।
0: हाँ शायद बुझ सकता कुछ कसकी विटामिन की कमी चली आई वो मंजू।
2: ना ना लेकर चले आई
0: तब सियाने पूछ गया ऐसे भी।
2: धन्यवाद
0: जी तुंदा आशीर्वाद है तुंदा प्यार
2: है।
0: ठीक है जी ठीक है। पर जने जंगे भाई पीड़ा लगी पी उंदी पिट्ठी पीड़ा लगी पी उंदी ता ये तो सयाने रे लक्षण हुंदे ना।
2: हां सयाने लक्षण हुंदे लग पी उंदे रहना और करन देना ता लगी धन लाइफ में जंगे भाई पीड़ा।
0: हां बिल्कुल
2: भाई जरूर आज पहले जंगे भाई पीड़ा का बुखार आ रहा।
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बरसात में
2: अरे जवान जो यंग बिल्कुल।
0: चलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच और जरूर तुम की फरमाइश पूरी कर ले है। जी दराना रा नाम भी दसी दिया अपनी रा जी।
2: सुनीता।
0: सुनीता देवी।
2: सुनीता देवी।
0: ठीक है जी। तुसु सोगी रेंदे निठी रेंदे नॉर्मलिंगा?
2: ना भाई इंदे का ऊपर पूरा गारिंगे डी ऊपर मिते पूरे मिते।
0: आ मतलब इठी है ना धर्मशाला
2: में? इंदे भाई पहले पहले दिए बार आवारा चलसे कटाए रा एक ठीक कर दे दाले से दो प्यारी।
0: चलिए
2: देवरारी
0: जी जी
2: अबे एक ही कॉलेज में बार घोरते एक ही ओले आप थोड़ी पढ़ दे सेकंड स्कूल ले दे
0: अच्छा
2: जी
0: ठीक है जी जरूर होने ले है
2: भाई धन्यवाद
0: धन्यवाद जी। चलिए शो तो फरमाइश बहुत ज़्यादा बजेगी मिनटा सोलह गठ बजी न और कार्यक्रम जो फिलहाल सुथों लेंदे न विराम थोड़ा करेगा क्योंकि फरमाइश ज़्यादा तो धीरे धीरे फरमाइश दौर के सो भी पूरा कर दिन बने रहे जुड़े रहे आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने पन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे और इंडिया पंकज नहरी जी ये भी फरमाइश देते थे सो फरमाइश भी यह है ज़रूर पूरी कर दें नहरी साहब अगर फरमाइश स्किप बुझ गई हाँ तो और कोई गीत है ज़रूर होना ले है ना जी।

श्रोत एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही हैं बिल्कुल लाइव तुंदे वीडियो सेट में फिलहाल लेकर चल देना आगू और उन्हें दिन तू सभी जो है प्यार दे भजन

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तो ये सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी अगप कहने सो चल रही है। तई पंकज नहरी यदि फरमाइश किया सो थोड़े के स्किप बुझ गए, पर फिलहाल पंकज नहरिया जो हुनंदे ने गीत

चलिए श्रोताओं, फिलहाल ना हूँ सचिन कपूर, अब इजाज़त भी ले लेनो गंद गंदे एक लास्ट फरमाइश जो नॉर्मलिंगा था छोरी थी दरानी जेठानी फरमाइश रखा तो है। और रिश्ता कोई भी बोआ श्रोताओं, हमेशा की सो प्यारा होगी चलता और मान सम्मान से होगी चलता है ना। किसी भी रिश्ते में जो अहंकार ईगो अगर चली या तो सो रिश्ता फिर ज़्यादा दिन टिकदा नहीं आशो तो। सो अपने रिश्ते जो किया कोई भी रिश्ता वो आशो तो ज़रूर संभाल के रखा, अपनी औरतों प्रयास ज़रूर करा कि कोई भी रिश्ता किया सो खराब ना बोआ है ना। कजो कि एक मौके ज़िंदगी मुड़े शोतों और एक मौके ही असु जीने और एक मौके रिश्ते मुड़े ना सो अकेली अकेली मुड़े ना सो मनो है ना, दुआली थोड़ ना मुड़ते न अहंकार कसी गल्ला रहा ना बुना चिंदा। फिलहाल आऊँ सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त, माँ बुढ़े री सेवा ज़रूर करा, सियाने री सेवा ज़रूर करा और हर किसी का मान मान के असो जरूर करा। शो तो इन शब्द था, हम लोग इजाजत, नमस्ते धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चटा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल हा? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
12: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। जी हाँ बिल्कुल, गीत तो हम अपने साथ हर बार लेकर आते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार रहता है गीतों का। और साथ ही साथ श्रोताओं, ये पूरे 2 घंटे का सफ़र आपके साथ रहेगा। इस 2 घंटे के सफ़र में हम जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाएँगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कार्यक्रम के प्यारे से पहले गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार हम फिर से वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। और इन जानकारियों के साथ साथ हम थोड़ा सा कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज़िंदगी की। श्रोताओ, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रखे ज़िंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओ, ऐसा हमारे साथ ही नहीं होता है, हम सभी के साथ जो है उतार चढ़ाव ज़िंदगी के आते हैं, दुख सुख हम सभी के जीवन में आते हैं और हमें इनसे जूझते हुए ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार बीमार पड़ गई या कोई दुख आ गया तो बस यूं ही निराश होकर बैठ जाना है, बल्कि हमें उस परिस्थिति में भी, उस हाल में भी आगे उठना है और बढ़ना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर हम यूं ही रुक गए तो ज़िंदगी भी रुक जाएगी। अगर ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, दुखों से जूझते हुए हमें ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना है और थोड़ा खुश खुद को भी रखना है और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश करनी है। खैर, कई बार परिस्थितियाँ श्रोताओं ऐसा हो जाती हैं कि खुश तो हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को किसी कामकाज में तो व्यस्त रख सकते हैं ना। तो खुद को भी व्यस्त रखिए, अपनों को भी व्यस्त रखिए और इसी तरह जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल कार्यक्रम में हमें भी आगे बढ़ना है और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम जो है इस वक्त आप सभी के रेडियो सेट पर चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यारी सी नमस्ते, और इसी नमस्ते के साथ श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें और जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। खैर, बातें तो हमें होती ही रहती हैं, फिलहाल थोड़ा सा रुख हम जानकारियों की ओर करते हैं। श्रोताओं, आज के दिन की बात करें तो आज के दिन को हम मना रहे हैं विश्व मानवतावादी दिवस। हर साल 19 अगस्त को इसे मनाया जाता है, और ये दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय संकट के दौरान दूसरों की मदद करने में अपने प्राण गंवा दिए थे, या संकटग्रस्त लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुक लेते हैं और आप तक पहुँचा देते हैं ये प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और कार्यक्रम जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, विश्व मानवतावादी दिवस के इतिहास और शुरुआत की बात करें तो बगदाद बम धमाका 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद स्थित कनाल होटल में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के एक बड़ा बम हमला हुआ था। और शहीदी कर्मियों की बात करें तो इस दुखद हमले में संयुक्त राष्ट्र ने इराक विशेष प्रतिनिधि सेजियो बिएरा डी मेलो सहित 22 मानवीय सहायक कर्मी मारे गए थे। और इसके इतिहास की घोषणा की बात करें तो इसमें 5 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी रखा था। थोड़ी सी बातें श्रोताओं आज के दिवस के महत्व की करें तो ये उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध, आपदा और महामारी के बीच में ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। और जागरूकता की बात करें तो ये दुनिया भर में मानवीय सहायता कार्य के महत्व और चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करता है। श्रोताओं आज के दिन की महत्व कि हम बात कर रहे हैं तो ये आम लोगों की मानवता की भलाई की सेवा के लिए आगे आने को भी आज का दिन प्रेरित करता है। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, हमें वैसे भी हर किसी की भलाई करनी चाहिए, और कहते हैं भलाई का फल भी अच्छा मिलता है। अगर हम किसी की भलाई करती है तो ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करता है। तो श्रोताओं, अपनी बातों को थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो ये सुनते हैं इस

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किसान केंद्रीय दृष्टिकोण और उद्यान विभाग कांगड़ा के सतत प्रोत्साहन से कांगड़ा तथा ऊना के किसान अब पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली फसलों को अपना रहे हैं। राज्य सरकार का मुख्य ध्येय किसानों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, फसलों में विविधता लाना और कृषि आय में गुणवत्ता वृद्धि करना है। जिला कांगड़ा तथा ऊना जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती एक अत्यंत आशाजनक विकल्प के रूप में उभरा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरे हैं और सेवानिवृत्त व्याख्याता जीवन सिंह राणा ने उनके पुत्र श्री आशीष सिंह राणा, जिन्होंने प्राकृतिक खेती पद्धति के माध्यम से इस फसल को सफलतापूर्वक स्थापना प्रबंधन तथा प्रसंस्करण करके एक मिसाल कायम की है। वहीं अब जहां अच्छी गुणवत्ता वाले ड्रैगन फ्रूट बाजार में बेहतर दामों पर बिक जाते हैं, वहीं किसानों को अक्सर छोटे आकार के अतिरिक्त और बिना बिके फलों के विपणन में कठिनाई आती है। इस समस्या के समाधान के लिए उद्यान विभाग किसानों को ऐसी उपज बर्बादी से बचाकर प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियां के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

तो इसी गूंज के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। श्रोताओ, आज के दिन को हम मना रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। हर साल 19 अगस्त को हम इसे मनाते हैं। ये दिन फोटोग्राफी की कला, इतिहास और इसके महत्व को याद करने के लिए समर्पित है। ये दिन दुनिया भर के फोटोग्राफर अपनी बेहतरीन तस्वीरें साझा करते हैं और इस कला का जश्न भी मनाते हैं। आज के इतिहास की शुरुआत की बात करें तो डैग्रे और टाइप प्रक्रिया, इस दिन की शुरुआत डैग्रे और टाइप नामक फोटोग्राफी तकनीक के आविष्कार से हुई थी और वर्ष 1839 में फ्रांस के लुई डैग्यूरे और जोसेफ नाइसेफोर नियेप्स ने इस पहली व्यावहारिक फोटोग्राफी प्रक्रिया को विकसित किया था। और इसकी घोषणा की थोड़ा सी बात करें श्रोताओं, तो 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने इस आविष्कार को आधिकारिक तौर पर दुनिया के लिए मुफ्त उपहार के रूप में घोषित भी किया था। तो श्रोताओं, और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो ये कार्यक्रम में कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 2025 और 26 के दौरान विपणय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों की 54.84 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। इस वित्त वर्ष में 2024-25 में हुई 39.19 करोड़ रुपए की बिक्री की तुलना में 39% अधिक है। इससे बोर्ड को लगभग 4.50 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है। ये जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की अध्यक्षता मंडल की 248वीं बैठक के दौरान दी गई है। उद्योग मंत्री ने बोर्ड द्वारा विभिन्न उत्पादों की प्रभावशाली बिक्री के लिए उपलब्धियों की सराहना भी की है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे फोटोग्राफी दिवस के बारे में। श्रोता, यादों को संभाल कर रखता है ये फोटोग्राफी दिवस। ये तस्वीरें हमारे जीवन के खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं और साथ ही साथ तस्वीरें बिना कुछ बोले कुछ बहुत कुछ कह जाती है और समाज को एक नया नज़रिया भी दी जाती है। कलाकारों के सम्मान की थोड़ी सी हम बात करें तो इस दिन हम उन सभी लोगों की मेहनत और नज़रियों का सम्मान देते हैं जो कैमरे के जरिए दुनिया को बहुत कुछ दिखाते हैं, दुनिया के सामने बहुत सारी तस्वीरों को रखते हैं। तो श्रोता, कार्यक्रम में हम और भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो ये कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के धारकंडी क्षेत्र के पंचायतों के बीपीएल सर्वे से चिन्हित 715 परिवारों के सदस्य के साथ मंगलवार को रीड कुमार ने में शाहपुर के विधायक तथा उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संवाद किया है। इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि बीपीएल परिवारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार की इन परिवारों से संबंधित सभी कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों की जानकारी साझा की जाएगी, जिसमें पात्र अभिलाभार्थियों को समय पर योजनाओं की जानकारी मिलेगी और वह उनका लाभ भी उठा पाएंगे। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम फोटोग्राफी की बात श्रोता कर रहे थे। तो एक दौर वैसा भी हुआ करता था जब हम लोग तस्वीर लेने के लिए फ़ोटो स्टूडियो में जाया करते थे। फ़ोटो स्टूडियो पर फ़ोटो खिंचवाने वाले की काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन विकसित हुई टेक्नोलॉजी ने आज वो दौर ला दिया है कि हम घर पर भी अपनी तस्वीरें खुद ब खुद ले सकते हैं। हर घर में कैमरा है, हर हाथ में आज कैमरा है, हर कोई फोटोग्राफर है और कहीं भी किसी भी समय अपनी तस्वीरों को ले सकता है और बढ़िया तस्वीरें आती हैं और सबको अच्छा लगता है। मोमेंट कोई भी हो, हर कोई तस्वीर लेना चाहता है और फोटोग्राफी का शौक़ हम में से बहुत सारे ऐसे श्रोताओं को है जो तस्वीरों को लेने का शौक़ रखते हैं और ढेर सारी तस्वीरों को इंस्टाग्राम, फेसबुक और

हर जगह शेयर भी करते हैं और अच्छा लगता है। हर किसी का शौक़ होता है और शौक के मुताबिक जब हम अपने किसी काम को करते हैं तो दिल को भी एक बड़ा सुकून मिलता है और खुद को अच्छा महसूस होता है। जी हाँ, बिल्कुल, शौक कोई भी हो, श्रोता हो, हम सभी को अपने शौक के अनुसार काम करना चाहिए। और फिलहाल इस समय हमारा थोड़ा सा रुझान हो रहा है गीत की ओर, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए श्रोताओं आप तक हम पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: कांटे।
1: तो इसी गीत के साथ है, साई के साथ बजे हैं, तो आइए सुनते हैं समाचार।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ट साइड तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
3: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोक नीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नागरिकों को सूचित करने और उनसे जुड़ने के लिए करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून चौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णनगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक पेश की जाए। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4,611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पाकिस्तान पर 2-0 की बढ़त बना ली है। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिलने के कारण प्री क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees. Briefing media after the cabinet meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said 4 multi-tracking projects of railways will cover 8 districts across West Bengal, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The minister said the government has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonparsa section of National Highway 22 to 4-lane standard in Bihar.
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं।
4: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonparsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
0: Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a range of 6 to 8%. He said this growth story is driven by 4 key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Mr. Vaishnaw was addressing the Uttar Pradesh Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high quality infrastructure while maintaining cost effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference 2026 in New Delhi. Union Minister of Education Prahlad Joshi today met with senior officials of the Department of Higher Education to review the implementation of the initiative to provide free online coaching to youth preparing for competitive exams. The program builds on the announcement made by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day address. President Draupadi Murmu today advised public servants to use social media platforms not only to inform and engage citizens, but also to listen to their concerns, understand them and respond appropriately. She stressed that when information travels rapidly, accuracy, credibility and public interest must always guide official communication. She said this during her interaction with the officer trainees of Indian Information Service and Indian Statistical Service at the Rashtrapati Bhavan. A court in West Bengal's Nodia district has ordered the issuance of an arrest warrant against Trinamool Congress MP Mahua Moitra for failing to appear before it in an alleged hate speech case. The Krishnanagar court also directed that a report on the execution of the warrant be submitted by 28th of August. The case against Moitra alleges that she insulted women and made the hate speech. The court had earlier issued precognizant summonses to her in the matter. U.S. Ambassador to India Sergio Gaur today described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the center and in the region have taken significant steps to improve the security. Mr. Gaur is on his maiden visit to the Union Territory, where he called on Chief Minister Omar Abdullah at his residence in Srinagar. He described the meeting with the Chief Minister as positive and said that both the sides have identified key follow-ups to be taken forward in the future. Iran's Armed Forces Chief of Staff, Major General Ali Abdullahi, has warned that countries on the southern shores of the Persian Gulf should not assist or facilitate U.S. military forces. The Armed Forces Chief said Tehran is closely monitoring military activity at regional bases. His warning comes as the U.S.-Iran conflict enters its 4th month, while the Pentagon evaluates its military footprint in West Asia with a view to reducing its presence. And in FIH Men's Hockey World Cup, crucial Pool D encounter between India and arch rivals Pakistan is underway in Amstelveen, the Netherlands. India is leading 2-0 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

शो तो हम बात कर रहे थे फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी हम सभी को बेहद पसंद होती है, और बात करें तस्वीरें देखने, किससे अच्छा नहीं लगता है। ये हम जिंदगी भर के खूबसूरत पलों को उसमें कैद करते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की तस्वीरों को हम लोग देखते हैं, निहारते हैं। अपनों की तस्वीरों को देख कर भी कभी बैठे बैठे यूं ही मुस्कुरा देते हैं। और अपनी फोटो की बात करें, बचपन के बहुत सारे अगर एल्बम को खंगाला जाए, देखा जाए, तो उन तस्वीरों को देख कर हमारे चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारा चेहरा, शरीर की बनावट भी बदल जाती है। क्योंकि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं श्रोता, उसी तरह से हमारे जो है ज़िंदगी के साथ साथ हमारे शरीर की बनावट में भी बदलाव आते हैं। कई सारे लोग, आपने अपने दोस्त मित्रों को देखा होगा कि जो पहले पतले हुआ करते थे, अब थोड़े से हेल्दी हो गए हैं। और कई बार जैसे जैसे हम बचपने से बाल्य अवस्था में, उसके साथ यौवन अवस्था में आते हैं, फिर बुढ़ापे में आते हैं, तो बहुत सारे चेहरे में भी बदलाव और शरीर की बनावट में भी बदलाव आ जाता है। और कई बार तो हम अपनों को मिले तो पहचान भी नहीं पाते हैं। और तस्वीरें जो हैं, तस्वीरों में हम हर पल को कैद करके रख सकते हैं। तस्वीरों से बहुत सारी बातें शो तो याद आती हैं कि तस्वीरें लेना हर किसी को पसंद होता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि पहले के समय में हम किसी भी कार्यक्रम में फोटोग्राफर को बुलाया करते थे, तस्वीरें लिया करते थे। अब घर का छोटा मोटा कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि घर पर किसी की सालगिरह हो, बर्थडे हो, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम हो, तो हम अपने अपने फ़ोन से हर कोई तस्वीरें लेना चाहता है। और तस्वीरों का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि सभी के पास महंगे महंगे फ़ोन हैं और बहुत सारे ऐप होते हैं जिससे तस्वीरें भी खूबसूरत आती हैं। उन तस्वीरों को हम लेते हैं और अपने गैलरी में भी इकट्ठे करके रख भी लेते हैं, और जब मन चाहा तब देख भी लेते हैं। जी हाँ श्रोताओं, तस्वीरें खींचने का और लेने का हम सभी को शौक़ होता है। हम में से बहुत सारे ऐसे श्रोता है जिन्हें तस्वीरें लेने का शौक़ है, और बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां भी हैं जिन्हें तस्वीरें लेने का शौक़ भी होता है। हम कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो हम ज़रूर तस्वीरों को लेना चाहते हैं, और फिर देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं। हर कोई अपने अपने जीवन में खूबसूरत है, अपने अपने ज़िंदगी में हर किसी को लगता है कि नहीं, हम बढ़िया दिख रहे हैं, हम सुंदर हैं। हर कोई दूसरे के साथ अपनी कल्पना नहीं करता है और यही कहता है कि नहीं भाई, हम उसे अच्छे हैं, बढ़िया है। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। हम में से कई ऐसे हैं जो बेचारे देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। हम ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया है। तो जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी महान हस्तियों की बात करेंगे जिन्हें फोटोग्राफी का शौक़ है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। हम गीत के बाद फिर से आएंगे और आपके साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे।

0: very good.
1: शो तो इस समय यहाँ बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम पहले बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे जो महान लोग भी हैं या यूँ कह सकते हैं कि अभिनेता भी हैं कि वो भी शौक़ रखते हैं फोटोग्राफी का। और साथ ही साथ अगर हम रवीना टंडन की बात करें श्रोताओं, तो रवीना टंडन 90 के दशक की एक्ट्रेस रही हैं और फोटोग्राफी का शौक़ भी बहुत इन्हें है। और ये जब भी कहीं अपने परिवार के साथ सैर सपाटे के लिए बाहर जाती हैं तो वहाँ की तस्वीरों को ज़रूर लेती हैं और उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर करती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड अभिनेता भी हैं और अभिनेत्रियाँ भी हैं जिन्हें शौक़ है। अब दिया मिर्जा की बात करें तो खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा को भी प्रकृति और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बेहद दिलचस्पी रही है और वो भी जहाँ भी कहीं जाती हैं उन तस्वीरों को लेती हैं। और दिया ने कई दफ़ा कुदरत के नज़ारों की ऐसी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा भी किया है, जिसे देखने के बाद उनके फ्रेंड्स को पता चला है कि एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो फोटोग्राफी का भी शौक़ रखती हैं। जी हाँ, तो हर किसी को फोटोग्राफी का शौक़ होता है और अगर खींचने का नहीं होता है तो देखने का ज़रूर होता है। अब हर्षवर्धन की हम बात करें कि बॉलीवुड के झक्कास एक्ट्रेस अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर भले ही बॉलीवुड में ना नाच रहे हों, लेकिन एक्टिंग का उन्हें एकमात्र शौक नहीं है, वह फोटोग्राफी करना भी पसंद करते हैं और बहुत सारी तस्वीरों को मतलब लेते हैं और साझा भी एक दूसरे के साथ भी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी साझा करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी और प्रतिभा की को भी बखूबी दर्शाते हैं। बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जो तस्वीरों को लेते हैं। अब चलते चलते फिर से मुझे याद आ गया कि वहीदा रहमान जी भी हैं, उनकी एक्टिंग और उनकी फिल्मों को देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं। आज भी उनकी फिल्मों को देखा जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। उनकी शानदार एक्टिंग और लाजवाब एक्सप्रेशन जो है सीधे दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ते हैं और सिनेमा की दुनिया में ज़्यादा बच्छाई हुई है। और साथ ही साथ उन्हें एक्टिंग करना तो पसंद है ही है और साथ ही साथ फोटोग्राफी भी उनका शौक रहा है। तो देखिए श्रोताओं, कितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी अपने फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं। तो हम जैसे लोगों को भी ये शौक़ है और हम अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं। शौक़ कोई भी हो उसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए और अपनी पसंदीदा काम भी करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं जब हम अपनी पसंदीदा काम करते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है कि अपना पसंद का काम कर रहे हैं और अपना शौक का काम करने से मन को भी बहुत सुकून मिलता है। जी हाँ, जीवन में सुकून ही तो है श्रोताओं, जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं, चलते फिरते घूमते फिरते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप भी इसी तरह से अपने सुकून प्राप्त करने के लिए अपने शौक के अनुसार अपने काम करें। और फिलहाल थोड़ा सा काम हम भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें सुनवाने होते हैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को प्यारे प्यारे गीत। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

इसी गूंज के साथ श्रोताओ कार्यक्रम में हम फिर से वापिस आ चुके हैं और कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, हम कार्यक्रम में फोटोग्राफी की बात कर रहे थे कि फोटोग्राफी एक जो है कला है जो हमें क्षणों को हमेशा के लिए संजोने की शक्ति भी देती है और तस्वीर अनेकों भावनाओं और एहसासों को जगा भी देती है जिन्हें एक पल के लिए फिर से हम महसूस भी कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें होती हैं श्रोताओ जो जीवन में हमें याद भी आती है कि उस समय हम इस तरह से दिखते थे, उस तरह से हम ऐसे थे, हमारे साथ ये भी था, हमारे साथ वो भी था। बहुत सारे हमारे ऐसे अपने होते हैं जो हम जिन्हें हम कहीं ना कहीं खो चुके होते हैं, लेकिन तस्वीरों में वो फिर से जिंदा ही लगते हैं। जी हाँ, होता है ना श्रोताओ सभी के साथ इस तरह से। तो फोटोग्राफी को आज के दिन हम मना रहे हैं, यानी 19 अगस्त को इसे मनाया जाता है और ये दिन फोटोग्राफी की कला के साथ साथ उससे जुड़ी तकनीक और इतिहास को भी समर्पित करता है। फोटोग्राफी में ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज होने और ऐसी तस्वीरों को संजोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों तक संजो कर भी रख सकते हैं। इसके फोटोग्राफी के इतिहास की बात करें तो सन 1837 में फ्रांस में शुरू हुआ था जिसमें जोसेफ नाइसोफोर निप्स और लुई डागे एरू नामक दो व्यक्तियों ने पहले फोटोग्राफी प्रक्रिया जिसे डेंगू एरोटाइप कहा जाता है विकसित की थी। इसके बाद 19 जनवरी 1837 को फ्रांसिस विज्ञान एकेडमी द्वारा इस आविष्कार की अधिकाधिक घोषणा की गई थी। ऐसा माना जाता था कि घोषणा के 10 दिन बाद ही फ्रांसीसी सरकार ने इस आविष्कार का पेटेंट खरीद लिया था। तो शो तो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए, बहुत सारी बातों को करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हम किसी के काम को करते हैं, किसी काम को करने का जिम्मा उठा लेते हैं, तो उस काम को करके हम सफलता भी प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफी के महत्व की बात करें तो फोटोग्राफी समय के साथ बेहतर होती जा रही है, हम सभी जानते हैं, और कई लोगों के लिए एक शौक से बढ़कर एक पूर्ण विकसित करियर भी बन गया है। हमें से बहुत सारे लोगों ने करियर के रूप में भी इसे अपनाया है और साथ ही साथ ये एक महज एक तकनीक होने से आगे बढ़कर अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम भी बन गया है जो एक ही तस्वीर में हजारों शब्दों को बयां करने में सक्षम भी होती है। फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग इस माध्यम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसकी क्षमता को पहचानने के प्रयास से फोटोग्राफी को मनाते हैं। और साथ ही साथ श्रोताओ, जिंदगी में थोड़ा विराम लगाने के लिए बस एक तस्वीर क्लिक करने की ज़रूरत होती है और तस्वीर कभी नहीं बदलती है बल्कि मौजूद लोग थोड़े से बदल जाते हैं। एक फोटोग्राफर अपने लेंस का उपयोग करके दुनिया को दुनिया के सामने पेश कर देता है और साथ ही साथ इस एक तस्वीर में वह शक्ति होती है जो उन सभी चीज़ों को भी समझ सकती है जिसमें शब्द भी समझने में विफल होते हैं। जी हाँ श्रोता, फोटोग्राफी एक कला है जो वास्तविकता को इतने सूक्ष्म तरीके से समाहित करती है जो वास्तव में वास्तविकता से कहीं अधिक बन जाती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस की एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी हाँ श्रोता, बिल्कुल सही बात कही है। जो पल आता है वो चला भी जाता है, लेकिन कुछ पलों को हम कैमरे में कैद करके रख सकते हैं और तस्वीरों के रूप में उन्हें ले भी सकते हैं। तस्वीरें लेना अच्छी बात है श्रोताओं, तस्वीरें लेनी भी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि तस्वीरें लेने में हम इतना खो जाते हैं कि हम खुद को ध्यान नहीं रखता है कि हम कहाँ खड़े हैं। और कई बार क्या होता है कि इतना खो जाने की वजह से कोई दुर्घटना भी हो जाती है। तो जब भी आप तस्वीरें लें, अपने आगे पीछे देख लें आप कहाँ खड़े हैं। और बिल्कुल सही बात है कि आजकल के दिनों में हमें पानी के पास जाकर तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं को ये शौक होता है कि पानी के बीच में जाकर तस्वीरें लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिन चल रहे हैं, पता नहीं चलता है कि कब पानी का बहाव तेज हो जाए और कब कोई घटना घट जाए। घटना को होने से रोकना है और बड़ी सतर्कता से अपने शौक को भी पूरे करना है। तस्वीरें भी लेनी है, अपनी भी लेनी है, अपनों की भी लेनी है, और जितना दूर से ले उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपने आगे पीछे ज़रूर देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप किनारे पर खड़े होकर तस्वीर ले, जैसे ही थोड़ा पैसा पीछे हो और कहीं गिर जाए, आपको चोट लग जाए। हर तरफ आजकल फिसलन है, फिसलन का माहौल बना हुआ है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें श्रोताओं, फोटोग्राफी का मज़ा लें आप। और चलते हैं फिर से हम गीत संगीत की ओर, और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 7:45, तो आइए चलते हैं समाचारों की ओर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शिमला में होगा शुरू। सत्र में होंगी 10 बैठकें। मॉनसून की वर्षा से राज्य में 167 सड़क मार्ग अवरुद्ध। सिरमौर के बांगनीधार माइनिंग क्षेत्र में मलबे में दबे तीनों मजदूरों के शव बरामद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, खराब मौसम को देखते हुए सरकार अलर्ट। भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता व राहत कार्य किए जा रहे सुनिश्चित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर। सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल में थमी विकास की रफ्तार। और हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बिक्री में 39% की वृद्धि। वर्ष 2026-27 के लिए 112 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शिमला में शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि 3 सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।
2: 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा और इसकी 10 सिटिंग्स होंगी। ये 12वां सत्र है 14वीं विधानसभा का। अभी तक विधानसभा सचिवालय को जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, कुल मिला के 1036 प्रश्नों के माध्यम से नोटिसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में प्राप्त हुए हैं और सारे के सारे ऑनलाइन है।
1: विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश विधानसभा की कार्य उत्पादकता देश भर में सर्वश्रेष्ठ रही है और ये 90% से 132% तक दर्ज की गई है।
2: अभी तक जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है, उसकी प्रोडक्टिविटी देश भर की विधानसभाओं में सबसे ऊपर रही है। हमने 100+ तो काम किया गया, 99, 95, 98, 90% से ऊपर रही है और 132% तक गई है।
1: प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहा। बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और नदी नाले उफान पर हैं। सिरमौर के बांगनीधार माइनिंग क्षेत्र में कल भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते मलबे में दबे तीनों कामगारों के शव आज बरामद कर लिए गए हैं। उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने म्याड़ क्षेत्र में कल हुई बादल फटने की घटना से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को बहाल करने का कार्य तेज कर दिया है। क्षेत्र के करपट में फंसे 95 लोगों में से 92 को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति में बारिश और बाढ़ के कारण प्रभावित चोखंग नेनगार संपर्क मार्ग और मयाड़ क्षेत्र में प्रशासन ने राहत एवं बहाली कार्य तेज कर दिए हैं। चोखंग नेनगार सड़क का करीब 800 मीटर हिस्सा प्रभावित हुआ है। लोक निर्माण विभाग की टीम लगातार राहत और सड़क बहाली कार्य में जुटी हुई है और मौसम अनुकूल रहा तो कल शाम तक मार्ग को यातायात के लिए खोलने की संभावना है। वहीं मयाड़ के करपट में बाढ़ के बाद जल स्तर घटने से स्थिति में सुधार हो रहा है। करपट में मौजूद 95 लोगों में से 92 लोग, जिनमें 7 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं, सुरक्षित राहत शिविर में पहुंच चुके हैं। स्थानीय महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 चरवाहों को झूले के माध्यम से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की गई है। करपट पुल अभी पानी में डूबा हुआ है, जबकि उड़गोस नाला पुल की मरम्मत हो चुकी है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही करने से बचने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 166 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि 130 बिजली ट्रांसफार्मर और 222 पेयजल योजनाएं ठप हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान 2 जिलों कांगड़ा व सिरमौर में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश का क्रम जारी रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के अनेक जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है और खराब मौसम को देखते हुए सरकार द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन व संबंधित विभागों की टीमें अलर्ट पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता व राहत कार्य सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों से दूर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। ऊना में आज जिला जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को बैठक में उठाए गए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दों, विकास कार्यों और जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, अराजकता बढ़ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में आयोजित विरोध प्रदर्शन और नव निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की बदले की भावना और गलत नीतियों के कारण हिमाचल में विकास की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को तानाशाही रवैये से बंद कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं और उन्हें प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के दौरान विपणन व वाणिज्यिक गतिविधियों के तहत विभिन्न उत्पादों की 54,84,00,000 रुपए की बिक्री दर्ज की है। शिमला में आयोजित बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि ये वित्त वर्ष 2024-25 में हुई बिक्री की तुलना में 39% अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे बोर्ड को करीब 4.5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए बोर्ड ने उत्पादों की बिक्री का 112 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय घंडालवी के विद्यार्थियों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को करियर का रोडमैप बनाने, शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करने और अंग्रेजी संप्रेषण कौशल को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया। राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनने और अपने व्यक्तित्व का निरंतर विकास करने के लिए भी प्रेरित किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य के हर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक अखबार आरंभ किया जाएगा ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ देश दुनिया की खबरों की जानकारी भी हो सके। आज ठियोग क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत जिला स्तरीय जन सुनवाई व सामाजिक अंकेक्षण की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि अखबार पढ़ने से विद्यार्थियों की पढ़ने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल राज्य बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर के समीप शस्त्र गांव में बरसात के बाद पक्की सड़क बनाई जाएगी। आज गांव में जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि यहां बिजली की वोल्टेज की समस्या का समाधान भी 10 दिन में किया जाएगा। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर शहर के बाहरी क्षेत्रों में विकास की एक नई क्रांति आएगी क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन इलाकों के लिए कई नए संस्थान और राज्य स्तर के कार्यालय मंजूर किए हैं। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से शिक्षकों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के प्रधान सचिन जसवाल ने कहा कि मार्च 2025 और 2026 में आयोजित वार्षिक परीक्षाओं का मेहनताना भी अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि इसी तरह अप्रैल 2025-26 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की राशि भी शिक्षकों को अभी तक नहीं मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शिमला में होगा शुरू। सत्र में होंगी 10 बैठकें। मॉनसून की वर्षा से राज्य में 167 सड़क मार्ग अवरुद्ध। सिरमौर के बांगनीधार माइनिंग क्षेत्र में मलबे में दबे तीनों मजदूरों के शव बरामद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, खराब मौसम को देखते हुए सरकार अलर्ट। भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता व राहत कार्य किए जा रहे सुनिश्चित। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर। सुक्खू सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल में थमी विकास की रफ्तार। और हिमाचल प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बिक्री में 39% की वृद्धि। वर्ष 2026-27 के लिए 112 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: समाचारों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ा

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी थी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो। है
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।

0: उन्हें बुलाएंगे।
1: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
2: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
0: क्यों?
2: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
3: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुँह नहीं छिपाना पड़ता।
4: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
5: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
6: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
5: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो शोतो आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
11: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी थी।

0: ज्यादा ही बोल दिया।
1: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जैसी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।